0: நேர்களுக்கு வணக்கம். ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையம் சக ஆண்டு 1948 பாத்ரபத மாதம் 25 நாள் திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2057 ஆவணி திங்கள் 30 நாள் 2026 ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 16 தேதி புதன்கிழமை. இன்றைய புலர்ந்த பொழுது அனைவருக்கும் நல்லதை வழங்கட்டும் என்ற வாழ்த்துக்களுடன் தொடர்கிறது 100.1 மெகாஹெட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசை. அடுத்ததாக நாம் கேட்கவிருப்பது செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மேன் நவீன் சக்சேனா. सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो. वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे. मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी.
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए. दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं. उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया. ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है. उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक

0: मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. The Finance Ministry has clarified that there will be no charges for person-to-person P2P UPI transactions irrespective of the amount transferred. The Ministry added yesterday that person-to-merchant P2M payments up to 2,000 rupees, including transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. Consequently, the Ministry stated that about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. National Payments Corporation of India, NPCI, has announced that a revised UPI merchant discount rate framework will come into effect from 15th of next month. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns. The spokesperson added, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar emphasized India's strong commitment to multipolarity, rooted in its independent stance and commitment to strategic autonomy. Delivering the valedictory address at the Silver Jubilee celebration of the Indian Council of World Affairs in Delhi, Dr. Jaishankar expressed

0: नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तन्वी के साथ आज मैं हूँ नवीन सक्सेना, और तन्वी अपने लिसनर्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कोट, बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ आज का इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जहाँ भी हैं अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ कीजिए, कुछ नया सीखिए, किसी की मदद कीजिए और अपने हिस्से की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और आज के दिन को कुछ ऐसा ख़ास बना दीजिए कि बहुत सालों बाद जब आज दिन आप याद करेंगे तो आपको भी लगेगा, वाओ, मैंने उस दिन कुछ ऐसा किया था, है ना तन्वी?
1: Absolutely, and I totally agree with this thought that a single smile can make your day better. A single smile can make you think about positive things and nothing else.
0: और तन्वी, मुस्कुराहट कुछ करे ना करे लेकिन सामने वाले को खुश जरूर कर देती है।
1: Absolutely. Good morning to you, Naveen, and a very warm welcome to all our listeners as well. You are here with us on Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashvani network as well. Today is 16th of September 2026 and it's a Wednesday. Happy Wednesday. Well, weekend is round the corner, so do wait, have some patience and enjoy each and every moment that you are living. So with this, let's begin our program with the news headlines, shall we?
0: Yes. सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे ट्रांसफर की गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट ढांचे के तहत आने वाले लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने ₹1,00,000 तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेन देन पर अनिवार्य रूप से शून्य MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेन देन पर कोई मासिक सीमा, लेन देन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है।

0: benefit of the public. The help desks will assist citizens in understanding and also availing the following services. And we have some more news from Chennai itself. RTOs collected penalties totaling nearing 25 lakh rupees on more than 20 Omni buses during surprise checks on the National Highway in Hosur. The drive targeted Omni buses, allegedly charging excessive fares and evading statutory taxes. The service was travelling towards Bengaluru, Kerala, Puducherry and several other districts.
1: Aur ab baat Delhi ki. दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं और आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 या 400 परिवारों से जुड़ी 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कल मास्टर प्लान

0: 1725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं और आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2000 या 400 परिवारों से जुड़ी 2000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कल मास्टर प्लान दिल्ली 2047 के मास्टर प्लान को लागू करने के लिए कई प्रमुख इंडस्ट्रीज और कॉमर्स संस्थाओं के साथ पांचवीं स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन बैठक की है। बैठक में डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवाना कुमार ने इस प्लान को रणनीतिक ढांचे के मुख्य पहलुओं का उल्लेख किया। वहीं दिल्ली नगर निगम ने वर्षों से सेवारत 296 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। ये बहुत अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी थे। ये निर्णय लंबे समय से सेवारत सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर महापौर प्रवेश सिंह वाही ने कहा कि राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: And when we are talking about Bangalore, I have another news for Safai Karamcharis only. So National Commission for Safai Karamcharis member Hardeep Singh Gill has directed all eligible Pura Karmikas in Bangalore to register on the Namaste app to avail central government welfare and safety benefits, including safety kits. At a meeting with Greater Bangalore Authority Chief Commissioner Maheshwar Rao, officials reviewed the safety, health, housing, education, pension and compensation issues of poor karmikas and manual scavengers. And in the three-day 15th All India Air Force Schools Athletics and Sports Championship 2026 began at Air Force Station Jalahalli yesterday. Air Vice Marshal Shakti Sharma, Assistant Chief of the Air Staff Education, inaugurated the championship. Teams from 7 IAF commands and Air Headquarters are participating. The opening events included the 100-meter and 200-meter relay races, with students showcasing sporting talent and team spirit.
0: तनवी दिल्ली के जो मेट्रो शहर है ना, वहाँ पे लोग सुबह से शाम तक भागते हुए नज़र आते हैं। और उसमें भी अगर महिलाओं की बात करें तो वो जब घर से निकलती हैं तो शाम को जिस वक्त घर आती हैं उस समय ऐसा लगता है कि शायद दिन भर के कामकाज के बाद अब घर का काम संभाला। लेकिन ड्यूरिंग दैट वे, उस दौरान अगर कोई उनकी सहायता करता है किसी भी तरह से, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसी के चलते महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने अगले 3 वर्षों में 125 हिरकानी कक्ष, ये वो कक्ष हैं जो स्तनपान कक्ष होते हैं, उनको स्थापित करने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। समझौते के अनुसार हिरकानी कक्ष इकाइयां राज्य भर के एसटी बस स्टेशनों पर स्थापित की जाएंगी। अगली खबर, राज्य में लघु खनिजों के निष्कर्षण, परिवहन, लाइसेंसिंग और निगरानी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाखनिज 2.0 डिजिटल प्रणाली का शुभारंभ किया। और वहीं एक और खबर आ रही है महाराष्ट्र से। एनटीपीसी लिमिटेड ने पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय में कल प्रतिष्ठित एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज 2026 यानी 2026-27 का मुंबई क्षेत्रीय चरण आयोजित किया जाएगा। इंजीनियरिंग या प्रबंधन कार्यक्रमों में अध्ययनरत जो छात्र हैं वो 2 सदस्यीय टीम बनाकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
1: And moving towards Hyderabad, Chief Minister Revanth Reddy met Prince Rahim Aga Khan V at the Taj Falaknuma Palace yesterday, inviting him to the upcoming three-day Telangana Global Summit 2026, scheduled to begin on 7th of December at the proposed Bharat Future City. During the meeting, the Chief Minister sought the Aga Khan Foundation's collaboration across the state's education, tourism and healthcare sectors. He specifically urged the foundation to support the restoration of historic heritage structures in the Musi River catchment area, including City College and Osmania Hospital, noting that the new medical facility is being constructed in Ghosh Mahal.
0: और अब बात कोलकाता की। रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने कल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्मित दो तटीय अनुसंधान पोतों की नींव रखी। वहीं पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए चार नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ये पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालू

0: घाट अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में बनाए जाएंगे। तो ये थी तमाम खबरें जो जुड़ी हुई थी आपके शहर से। और अब समझते हैं कि मौसम क्या कहता है। दिल्ली की बात करें तो बादल छाए रहने और हल्की बारिश की उम्मीद आज भी जताई जा रही है। तापमान 35 डिग्री और 25 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में भी तापमान 32 और 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। और कोलकाता की बात करें तो वहां भी लगभग यही हाल रहेगा, 34 डिग्री और 26 डिग्री के आसपास तापमान बना रहेगा।
1: Chennai is likely to see a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between minimum 27 degrees and maximum 35 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience generally rain or thundershowers would occur towards evening or night. The minimum temperature is expected to be 21 degrees while the maximum may reach 32 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm, just like Chennai. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 33 degrees Celsius.
0: और अब हम पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना और नजर डालते हैं इतिहास की उन घटनाओं पर जो जुड़ी हुई हैं आज के दिन से, और उन्हीं को ढूंढकर उन्हीं को खोजकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सुबह, नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और नया इतिहास। तो शुरुआत करते हैं 1987 से। 1987 में वो आज ही का दिन था जब ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।
1: In the year 1967, Tibetan, Indian and Chinese troops engaged in fighting at Nathula Pass on the Tibet-Sikkim border.
0: 1989 में वो आज ही का दिन था जब 8 लोगों ने हॉट एयर बैलून के जरिए ईस्ट जर्मनी से उड़ान भरकर पश्चिम जर्मनी की सीमा पार की थी।
1: In the year 1990, Air India established a world record by evacuating more than 1.11 lakh people in just 8 weeks from Kuwait or Iraq during the Gulf War. In 1996, first one-day international in Canada was played between India and Pakistan at Toronto. And in 1997, Rajiv Balakrishnan had set 100-meter national mark in the ITC International Athletics Meet.
0: घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। और अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जिन्होंने आज के दिन या तो जन्म लिया या हमसे जुदा हो गए, लेकिन कुछ ऐसा कर गए कि अपनी छाप हम पर छोड़ गए। आज का दिन जुड़ा हुआ है उस महान योद्धा के साथ जिसको नमन करने का जी चाहता है, जिसने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वर्ष 2017 में आज ही के दिन भारत ने खोया था मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह को। भारतीय वायुसेना के इतिहास में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। बात करें 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में तो उन्होंने भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किया था और भारतीय वायुसेना के ऐसे महान अधिकारी थे जिन्हें देश ने 5 सितारा रैंक यानी मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स से सम्मानित किया था।
1: And when we are talking about martyrs, let's talk about another personality, and we have the next personality. So let me not take his name and play a clip from the archives of Prasar Bharati and know more about his this important personality. And he is Tarapur.
2: पूना हॉर्स रेजिमेंट के जांबाज फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बरजोर जी तारापुर 1 जनवरी 1942 को वो बतौर कमीशन्ड ऑफिसर 7th हैदराबाद इन्फेंट्री का और आजादी के बाद 1951 में पूना हॉर्स का हिस्सा बन गए। पूना हॉर्स में उनके पास सेंचुरियन टैंक्स की कमान थी। वर्ष 1965 शांत पश्चिमी सीमांत गरज उठा। 3 सितंबर 1965 को पूना हॉर्स के कमांडेंट तारापुर को सियालकोट सेक्टर के लिए मार्च करने का आदेश मिला। तारापुर अपनी बहादुर टुकड़ी के साथ युद्ध भूमि पहुंच गए। तारापुर के नेतृत्व में सियालकोट सेक्टर में भारतीय सेना जीतते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ऊपर से हवाई हमले, नीचे हैवी शेलिंग, पर तारापुर आगे बढ़ते गए। फिल्लौरा पर कब्जा अहम था। मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, टैंकों को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन तारापुर की टुकड़ी आगे बढ़ती गई। फिल्लौरा और चाविंडा के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की यूनिट पर पाकिस्तानी फौज की

0: बड़ी टुकड़ी ने वजीर वली पोस्ट से बड़ा हमला बोल दिया। तारापोर के पास कम सैनिक थे लेकिन हौसला बड़ा था। कम संख्या में होने के बावजूद तारापोर की टुकड़ी ने मैदान नहीं छोड़ा। इसी दौरान दुश्मन के टैंकों और आर्टिलरी के जोरदार हमले की जद में उनका सेंचुरियन टैंक भी आ गया था। एक और हमले में उनकी बांह बुरी तरह से घायल हो गई थी। उन्हें वापस भेजने की कोशिश की गई लेकिन तारापोर ने इनकार कर दिया और वो वहीं रहे, लड़ते रहे। अगले दो दिनों तक एक हाथ में स्लिंग लटकाए हुए वो नेतृत्व करते रहे। 13 सितंबर 1965 को तारापोर ने अपने साथियों के साथ वजीर वली पर हमला बोल दिया। 3 दिन बीत गए। 16 सितंबर 1965, लड़ाई में तारापोर बुरी तरह से घायल हो गए थे। युद्ध के दौरान तोप का एक गोला तारापोर के टैंक पर गिरा। उनका टैंक आग में घिर गया। इसी हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर शहीद हो गए।
1: तन्वी, देश की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची हुई रेखाएं नहीं होती, उनके पीछे असंख्य सैनिकों का साहस, त्याग और बलिदान होता है। और ऐसे ही थे परमवीर चक्र विजेता एबी तारापोर। और बात भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस महान कलाकारा की जिसने आज ही के दिन इस दुनिया को विदा कह दिया था, बात केसरबाई केरकर की। पद्म भूषण से सम्मानित केसरबाई केरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महान गायिकाओं में गिनी जाती थी। उनकी गायकी में शास्त्रीय परंपरा की गहराई और स्वर की अद्भुत शक्ति थी। आज उनकी पुण्यतिथि है, याद करते हैं केसरबाई को उनके इस गायन के साथ।

और अब बात उस महान शास्त्रीय गायिका की, जिसका आज जन्मदिन है, जिनकी आज जयंती है। आज के दिन 1916 में उनका जन्म हुआ था। भारत की महान शास्त्रीय गायिका M.S. सुभालक्ष्मी। उनकी आवाज में भक्ति थी, शास्त्रीय थी और मिठास थी जो सीधे उनके दिल तक पहुंचती थी। सुनते हैं उनके स्वर में यह खूबसूरत भक्ति।

तन्वी जानते हैं कि उनकी कला साधना का ही प्रभाव था कि लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने उन्हें सुस्वर लक्ष्मी का नाम दिया और किशोरी अमोनकर ने उन्हें आठवां सुर का नाम दिया, यानी जो संगीत के सात सुरों से भी ऊपर था, भारत रत्न से उनको अलंकृत किया गया था।

0: और जब बात गीतों की हो तो आज के दिन को हम बिल्कुल भी नहीं भुना सकते, क्योंकि आज एक और शानदार नाम आता है, वो है प्रसून जोशी का। आज उनका जन्मदिन है। बहुत ही खूबसूरत कविताएं, बहुत ही खूबसूरत लेखन रहा है उनका, बहुत ही खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे हैं। तो कुल मिला के आपके लिए कुछ यूं लेकर आए हैं प्रसून जोशी के साथ।
1: अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है, अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है, उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकर पथ के, धूल समर्पित होती जाए दूर।

0: Yes, we are not talking about King. We are talking about Nick Jonas. Today is his birthday, and we generally know him as the rock band member Jonas Brothers, along with his brothers Joe and Kevin. And we have seen him in multiple movies, be it Jumanji, Chaos Walking, and many, many more.
1: और अभी हम इतनी जल्दी बॉलीवुड को नहीं छोड़ने वाले हैं. आज ही के दिन में जन्म हुआ था एक ऐसे व्यक्ति का जिसने संगीत की दुनिया में बहुत कम काम किया लेकिन बहुत अच्छा काम किया. नाम राम लक्ष्मण का, और 1942 में उनका जन्म हुआ था. लेकिन जिस मूवी के लिए उन्होंने संगीत दिया था उसे हम कभी नहीं भूल सकते, मैंने प्यार किया. हम आपके हैं कौन, छोटे से मेडली है.

0: आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। खूबसूरत गीत का मजा लीजिए और इजाजत दीजिए मुझे नवीन और तन्वी को।
1: Stay tuned for coming up next is समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ वंडरफुल डे।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमरीका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0% व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0% MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का नुकसान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय

0: को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
1: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहाँ आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में एनएसजी की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
5: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के दिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत

0: तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्रीय गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमरीका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100

0: और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत, भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நவீன் சக்சேனா. सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे. इसके परिणामस्वरूप सभी व्यक्ति से

0: व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपये से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपये या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपये प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रखे हैं। यह अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीक क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। IMF के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहा है। इस दौरान श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैक्काल में भी आज स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में अगले 2 दिन में बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं केरलम के एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कुन्नूर जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच भी कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The government has clarified that there will be no charges for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Finance Ministry added yesterday that person-to-merchant P2M payments up to 2,000 rupees, including transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also

सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा भारत के पास मजबूत आर्थिक आधार और निजी क्षेत्र की गतिशीलता के बल पर वैश्विक विकास के अगले दौर का नेतृत्व करने की क्षमता। भारत

0: का संयुक्त युद्धाभ्यास संयुक्त उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेन में शुरू। न्यूजीलैंड संसद में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विधेयक पारित और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल ₹2,000 से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने ₹1,00,000 तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत मजबूत आर्थिक आधार और निजी क्षेत्र की गतिशीलता के बल पर वैश्विक विकास के अगले दौर का नेतृत्व कर सकता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। क्लार्क ने भारत के गतिशील निजी क्षेत्र, विशाल प्रतिभा भंडार और प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण में तेजी से बढ़ती क्षमताओं की सराहना की। न्यूजीलैंड के संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हो गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
3: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: अमेरिका की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व

देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। रूस और यूक्रेन एक दूसरे की ऊर्जा बुनियादी केंद्रों पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस ने राजधानी कीव और अन्य शहरों पर करीब 200 ड्रोन से हमला किया। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के हमलों में राजधानी के पेट्रोल पंप के अलावा कई क्षेत्रों में बंदरगाहों को भी निशाना बनाया गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के समारा क्षेत्र में वोल्गा नदी के किनारे सिजरान के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। इससे पहले सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले दुनिया भर में ईंधन की कमी का मुख्य कारण हैं। इसराइल के हवाई हमलों में उत्तरी और दक्षिणी गजा में 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे और हमास का कमांडर शामिल था। स्थानीय अधिकारी ने बताया कि उत्तरी गजा पट्टी के शेख रादवान क्षेत्र में एक गाड़ी पर हुए इसराइल के हवाई हमले में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल था। इसराइल की सेना ने कहा कि उसने इस इलाके में हमास के एक लड़ाके को निशाना बनाया। एक अलग घटना में ब्रिटिश की एक स्वास्थ्य चैरिटी संस्था ने बताया कि उत्तरी गजा के जबालिया में उनके सहयोग से चल रहे एक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज की मौत हो गई। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने से आई बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई शहरों और गांवों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। आज विश्व ओजोन दिवस है। ये दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत के पास मजबूत आर्थिक आधार और निजी क्षेत्र की गतिशीलता के बल पर वैश्विक विकास के अगले दौर का नेतृत्व करने की क्षमता। भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू हुआ। न्यूजीलैंड संसद में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विधेयक पारित हुआ। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: இடம்பெற்றது திரைகானம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य एमडीआर लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर एमडीआर शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई क्षेत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

0: जारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से भूटान की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परम्परा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। ये अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित महान साधिका ने अपनी दिव्य स्वर साधना से भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व भर में गौरवान्वित किया। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। केरलम में एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will be on a two-day official visit to Bhutan from today. During the visit, Dr. Jayashankar will hold bilateral talks with Foreign Minister Bhutan, Leonpo D.N. Dungyel. He will receive a royal audience with the King of Bhutan and call on the Prime Minister of Bhutan. The Minister of External Affairs said the visit is in keeping with the tradition of regular high-level exchanges between India and Bhutan and to further strengthen the existing close ties of friendship and cooperation between the two countries. The government has clarified that there will be no charges for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Finance Ministry added yesterday that person-to-merchant PTM payments up to 2,000 rupees, including transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. Consequently, the Ministry stated that about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. National Payments Corporation of India, NPCI, has announced that a revised UPI merchant discount rate framework

0: இடம்பெற்றது மெல்லிசை தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देशभर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों

0: और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Lalima Aneja Dang. Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person, that is P2P, UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The Ministry said that consequently, approximately 96% of all person-to-merchant transactions will remain unaffected. It said that Merchant Discount Rate MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's Parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariffs and expanded trade between the two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from tomorrow across the country. It will continue till the 17th of next month. The key focus areas of the campaign include transforming cleanliness target units and high footfall public places, promoting youth participation in cleanliness and promoting Swachhata Se Samriddhi through circular economy and waste to wealth initiatives. The theme of this year's campaign, Swachhata Me Sehbhag, Swachh Bharat, Vikasit Bharat, underlines the role of collective participation and shared responsibility in advancing the vision of a Swachh and Vikasit Bharat. Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth is on an official visit to Russia from today till the 18th of this month. During his three-day visit, General Seth will hold discussions with the Commander-in-Chief of the Russian Land Forces, Colonel General Andrei Morvikhev, on issues of mutual interest, including professional military cooperation and training. He will receive a ceremonial guard of honour and pay tribute to fallen soldiers at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow. Well, World Ozone Day is being observed across the globe today. The day is dedicated to raising awareness about the crucial role of the ozone layer in safeguarding life on Earth. The theme for 2026 is Global Action for a Cooler Planet. This year marks the 10th anniversary of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol.

0: Samson top scored with a blistering 57 off 22 balls, while Abhishek Sharma contributed 39 runs off 19 balls. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 297 points to 74,301, while Nifty added 106 points to 23,225 when reports last came in. And before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for mature tax policy debate, keeping national interest first. India lodges strong protest with Pakistan over unacceptable conduct of Pakistani naval units leading to naval collision in international waters. India Electric Mobility Index 2025 announced by Niti Aayog, Delhi emerges top performer in adopting electric mobility, followed by Maharashtra and Karnataka. Saudi Arabia says it intercepted Houthi drone near Makkah. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया. नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन. सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया. हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी. हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया. और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान. अब समाचार विस्तार से. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए. वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी. श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया.
2: The question should not only be
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा. बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है. इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है. साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके.
1: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई. घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है. मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए. मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया. थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं. यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है. जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोविचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे. वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं. इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है. इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है.

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
4: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
4: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: ही अपनाया
1: है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை. லய விநியாசம் நிகழ்ச்சியில் கரணி மண்டபம் வி முருகன், சின்னக்கடம்பூர் மோட்டூர் வி வடிவேல் ஆகியோரின் தவிலிசை. இடம்பெறுவது மிஸ்ரஜாதி ஜம்பதாளம்.

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भवान ने क्या

0: सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा। सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि 2004 से 2014 तक ईपीएफओ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान निर्णय इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ा देता है, जो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वेतन वृद्धि, बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
2: The question should not only be...
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले 2 दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
0: नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया। इसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री लियोनपो डी एन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया था। इसका उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet has enhanced the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organization, EPFO, from 15,000.

0: हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: ऑयल वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा। अंडमान और निकोबार संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अध्यक्ष पद के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी और निष्पादन तथा मौजूदा नियमों के आधार पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें असाधारण योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा हो, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणी के किसी भी पेशे में स्नातकोत्तर डिग्री हो और राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021 की धारा 22(3)(a) के तहत निर्धारित संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान के क्षेत्र में 25 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें कम से कम 10 वर्ष स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के क्षेत्र में एक नेतृत्व की भूमिका में रहा हो। वेतनमान तथा अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट dhs.andamannicobar.gov.in। रक्षा मंत्रालय का संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। अनुसंधान अधिकारी, साधारण केंद्रीय सेवा समूह ख, राजपत्रित अननु सचिवीय। रिक्तियों की संख्या है 7। प्रतिनियुक्ति 2 वर्षों के लिए की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट caomod.gov.in। CSIR राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान में तकनीशियन के एक पद के लिए 21 रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ngri.res.in। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी आमंत्रित कर रहा है रजिस्ट्रार के प्रशासन सचिव के लिए आवेदन। एक पद उपलब्ध है और शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.niperguwahati.ac.in। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2026 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। विस्तृत परिणाम जानने के लिए देखिए संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in। सम्मिलित भू वैज्ञानिक परीक्षा 2027 का आयोजन 19 और 20 जून 2027 को किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन देश भर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए देख लीजिए वेबसाइट upsconline.nic.in। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम कार्यालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कर सहायक रिक्तियों की संख्या 25, बहुकार्य कर्मचारी MTS रिक्तियों की संख्या 57, कुल 82 रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in/kolkata/news-updates। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उन कहानियों के बारे में जो खबर नहीं बनती। इसके साथ ही आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
1: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून सरफिरोजी। Sarfirozi, I was just thinking that the festival of Ganesh Chaturthi and Tej are over, but we are still looking forward to more festivals in the coming months. Isn't it amazing, Sarfirozi, that how our festivals bring people together and strengthen family and social bonds by creating shared moments of joy, gratitude and community. Public celebrations like Durga Puja, Ganesh Chaturthi unite the entire neighborhood in a collective work and joy. And specific days like Raksha Bandhan or Bhai Dooj explicitly honor and protect family relationships. Relatives and friends travel long distances to meet during major holidays like Diwali or Eid. And yesterday it was Michami Dukkadam. An ancient Prakrit phrase used in Jainism to seek and grant forgiveness. It asks that any harm caused to others through thoughts, words or actions, knowingly or unknowingly, be forgiven and wiped clean. Let go of the grudges and start afresh with a peaceful, compassionate mind. Isn't it a beautiful concept, Sarfirozi?
0: बिल्कुल अनुजा, और कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे मन में किसी के लिए भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जी।
1: So all these celebrations reflect India's multi-religious fabric, fostering a mutual respect and shared joy across communities. So greetings to all of you for the upcoming festivals and shall we begin with our news headlines now, Sarfirozi?
0: Bilkul Anuja.
1: Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for mature tax policy debate, keeping national interest first.
0: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया।
1: India Electric Mobility Index 2025 announced by Niti Aayog. Delhi emerges top performer in adopting electric mobility followed by Maharashtra and Karnataka.
0: Saudi Arab ne kaha usne Mecca ke paas Houthi drone ko nasht kiya. Hamle ke khilaf karwai ki chetavni di. Houthi ne shahar ko nishana banane se inkar kiya.
1: And forecast of heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab and some parts of Northeast today. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Unified Payments Interface or UPI and also about World Ozone Day.
0: श्रोताओं, महान क्रांतियां वही होती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देती हैं, और यूपीआई की कहानी सच में ऐसी ही एक क्रांति है। अनुजा, अब वो दिन पुराने हो चुके हैं जब हमें अपनी जेब में ढेर सारे नोट रखने पड़ते थे और हम परेशान रहते थे, अभी कभी किसी से सब्जी खरीद रहे हैं तो हमें चेंज की जरूरत पड़ती थी। तो आज लेकिन बस हाथ में एक टच स्क्रीन मोबाइल हो और ट्रांजेक्शन पूरा। यूपीआई ने सिर्फ पेमेंट का तरीका ही नहीं बदला बल्कि पेमेंट को लेकर हमारी पूरी जिंदगी और उसकी सोच बदल दी है।
1: एब्सोल्युटली, एज आर्थर सी क्लार्क हैज फेमसली सेड, एनी सफिशिएंटली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक एंड परहैप्स यूपीआईज बिगेस्ट अचीवमेंट इज दैट इट हैज मेड दिस मैजिक एन ऑर्डिनरी पार्ट ऑफ एवरीडे इंडियन लाइफ।
0: बिल्कुल अनुजा, और अब सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि यूपीआई क्या है। यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई कोई ऐप नहीं है बल्कि एक ऐसा डिजिटल भुगतान अवसंरचना यानी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अलग बैंकों और भुगतान ऐप्स को एक साथ एक ही नेटवर्क से जोड़ता है। फोन पे, गूगल पे या भीम जैसे ऐप्स यूपीआई का उपयोग करके आपके बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत धन स्थानांतरित करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी इंटरऑपरेबिलिटी, यानी आप किसी भी यूपीआई ऐप से किसी भी दूसरे यूपीआई ऐप के उपयोगकर्ता को भी भुगतान कर सकते हैं। और भारत की विशेष उपलब्धि ये है कि यूपीआई ने बैंकों, ऐप्स, क्यूआर कोड और करोड़ों उपयोगकर्ताओं को एक ही सीमलेस इकोसिस्टम से जोड़ दिया है।
1: Yes, so how did India go from a new digital payment idea to a system processing more than 24,162 crore transactions annually? Let's rewind. UPI began its journey in April 2016 when it was launched on a pilot basis with 21 member banks.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, जिंदगी की एक नई शाम में हम आ गए हैं न्यूज मैगजीन परिक्रमा का एक नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में

0: And by August, it was open to the public as banks began making their UPI-enabled apps available.
1: और अनुजा इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिसंबर 2016 में आया भीम ऐप, एक ऐसा आसान प्लेटफॉर्म जिसने लोगों को अपने मोबाइल फोन से सीधे बैंक टू बैंक पेमेंट करने की सुविधा दी। फिर 2017 में डायनेमिक QR आया जिसने पेमेंट की रकम और उसे पाने वाले की जानकारी जैसी डिटेल्स को अपने आप शामिल करके मर्चेंट पेमेंट को और भी आसान बना दिया।
0: एंड देन इन 2018 UPI 2.0 ब्रॉट अ होल न्यू सेट ऑफ फीचर्स, इनवॉइस व्यूइंग, UPI mandates, signed QR and intent-based payments along with overdraft account linking.
1: और अनुजा इसके साथ ही UPI अब सिर्फ रोजमर्रा की खरीदारी तक सीमित नहीं रहा। 2019 में SEBI ने रिटेल निवेशकों को IPO के लिए अप्लाई करते वक्त भी UPI का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी।
0: And that same year, UPI crossed a landmark milestone, 1 billion transactions in a single month. 1 billion, that number was more than a statistic. It was a signal that India had embraced a completely new way of transacting.
1: और UPI का जो सफर था अनुजा वो यहीं नहीं रुका। 2020 से 2022 के दौरान इसमें लगातार सुधार होते रहे। UPI ऑटो पे ने सब्सक्रिप्शन और इंश्योरेंस प्रीमियम से लेकर SIP और EMI तक बार बार होने वाले पेमेंट को भी आसान बना दिया।
0: And then came UPI 123 Pay, opening the digital payments ecosystem to feature phone users through options including IVR, missed calls and proximity sound-based payments.
1: और इसके light version यानी UPI light के साथ कम कीमत वाले transaction और तेज हो गए। इनके लिए PIN number डालने की जरूरत नहीं थी। Credit card को भी UPI ecosystem में शामिल कर लिया गया।
0: By March 2022, UPI had crossed 5 billion monthly transactions, while during fiscal year 2021-22, it processed transactions worth more than $1 trillion.
1: और 13 जुलाई 2021 को भूटान में UPI के पहले इंटरनेशनल इस्तेमाल के साथ भारत की डिजिटल पेमेंट की कहानी सीमा पार पहुंच गई।
0: In 2023, credit line on UPI allowed pre-sanctioned bank credit lines to be linked as a funding source. And by fiscal year 2023-24, UPI accounted for around 70% of India's digital payment transactions.
1: और इसके बाद 2024 में एक और दिलचस्प इनोवेशन आया, UPI Circle. इसने प्राइमरी यूजर को तय ट्रांजैक्शन लिमिट के साथ सेकेंडरी यूजर्स को ऑथराइज करने की सुविधा दी।
0: And that same year, in 2024, RBI raised the UPI transaction limit for tax payments from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees per transaction, with higher limits also introduced for selected categories such as capital markets, IPO subscriptions, insurance, healthcare and education. And UPI 123 Pay and UPI Lite also received higher transaction limits.
1: और बात करें पिछले साल की अनुजा, जब UPI ने on-device authentication के साथ एक और कदम आगे बढ़ाया, इससे स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक का इस्तेमाल करके पेमेंट करना मुमकिन हो गया। आधार बेस्ड फेस्ड ऑथेंटिकेशन ने यूपीआई पिन सेटअप की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया, खासकर पहली बार इस्तेमाल करने वाले और सीनियर सिटीजंस के लिए।
0: बट हियर इज द बिगर स्टोरी, हाउ मच हैज दिस टाइनी लुकिंग QR कोड एक्चुअली चेंज द स्केल ऑफ इंडियाज इकोनॉमी? द आंसर इज staggering. From financial year 2016-17 to financial year 2025-26, annual UPI transactions rose from around 2 crores to more than 24,162 crores, an increase of roughly 12,000 times.
1: सालाना ट्रांजैक्शन वैल्यू सिर्फ 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 314 लाख करोड़ रुपए हो गए, यानी 4000 गुना से भी ज्यादा। जुलाई 2026 तक यूपीआई इकोसिस्टम में 741 लाइव बैंक शामिल थे, जो 2365 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे थे।
0: वेल दैट इज नॉट मेरली ग्रोथ, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे एन एंटायर कंट्री मूव्स मनी। एंड इंडिया डिडंट स्टॉप एट इट्स borders. What began as an Indian innovation has now become a global digital payment story. As of 2024, UPI accounted for around 49% of global real-time payment transaction volume, a milestone highlighted by the International Monetary Fund in its last year's report on digital payments.
1: और भारत के यूपीआई सिस्टम की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि भूटान के साथ साथ नेपाल, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस और कतर समेत ये कई देशों में काम कर रहा है।
0: एंड द मैप कंटिन्यूज टू ग्रो। इन जून दिस ईयर यूपीआई एक्सेप्टेंस वॉज

0: लॉन्च्ड इन कंबोडिया एज वेल।
1: और इसी महीने ग्रीस में क्रॉस बॉर्डर रेमिनेंट्स के लिए यूपीआई शुरू हुआ।
0: And on 30th of July this year, cross-border remittances between the Maldives instant payment system Favara and India's UPI went live. With Greece and the Maldives joining the journey, UPI is now live in 11 foreign countries for acceptance and or cross-border remittances as well.
1: और अनुजा इन सब बड़ी उपलब्धियों के बीच एक जो confusion चल रही है UPI को लेकर वो ये है कि क्या इससे payment करने पर किसी तरह के charges लगेंगे? तो हाल ही में सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन चाहे उनकी रकम कितनी भी हो वो मुफ्त रहेंगे, यानी कोई चार्ज उस पर नहीं लगेगा। व्यापारियों के लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर फ्रेमवर्क कुछ खास कम कीमत वाले ट्रांजेक्शन को सुरक्षा देता रहेगा। हालांकि मर्चेंट डिस्काउंट रेट सिर्फ तय सीमा से ज्यादा कीमत वाले खास मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर लागू होंगे।
0: Also clarified that merchant discount rate is not a tax collected by the government or NPCI. It is an ecosystem charge distributed among participating entities to support the operation and expansion of the payment ecosystem.
1: और यहाँ अनुजा एक कोट याद आ रहा है मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने कहा था कि सपनों के सच होने के लिए जरूरी है कि सपने देखे जाएं। तो 10 साल पहले यूपीआई एक सपना था, हर भारतीय के लिए बनाया गया एक सरल, सुरक्षित और इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम जो आज सच होकर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है।
0: जी बिल्कुल, एंड यूपीआई स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ इंडिया क्रिएटिंग समथिंग एट स्केल एंड शोइंग द वर्ल्ड हाउ it can be done. And a decade later, that little QR code has become a symbol of a changing India. And coming to our next topic, what is it?
1: बिल्कुल अनुजा, बात करेंगे वर्ल्ड ओजोन डे की। श्रोताओं, हमारे सिर के ऊपर एक ऐसी ढाल है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, उसे छू भी नहीं सकते, फिर भी हर दिन वो हमारे और सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों के बीच एक ढाल बनकर खड़ी रहती है। हम ओजोन परत की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक सुरक्षा कवच है और जिसे अक्सर हमारे दुनिया का छाता भी कहा जाता है।
0: कार्ल सगान वंस फेमसली रिमाइंडेड अस व्हाइल लुकिंग एट अ प्लैनेट फ्रॉम स्पेस, दैट्स हियर, that's home, that's us. And protecting that home sometimes begins with something as ordinary as switching on an air conditioner. The theme of World Ozone Day 2026 is Global Action for a Cooler Planet, celebrating 10 years of sustainable cooling under the Kigali Amendment to the Montreal Protocol.
1: किगाली संशोधन को 2016 में अपनाया गया था। इसमें देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम करने पर सहमति जताई थी। ये कूलिंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये संशोधन उस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है जिसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पर्यावरण से जुड़ा एक अहम समझौता बताया था।
0: एंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द किगाली अमेंडमेंट कुड अवॉइड अप टू 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल by the end of the century. So what does all of this mean for us? It means protecting the ozone layer is not some distant environmental project happening somewhere in the world. It begins at home.
1: बिल्कुल अनुजा, हम शुरुआत कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट यानी कम बिजली खपत वाले उपकरण का इस्तेमाल करके, कूलिंग इक्विपमेंट का सही ढंग से रखरखाव करके और बेवजह बिजली की खपत से बचकर। और याद रखिए श्रोताओं, अपने एयर कंडीशनर का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ये आसान से कदम एक बहुत बड़ी ग्लोबल कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं।
0: So today when we step outside into the sunshine, perhaps we can spare a thought for that invisible layer high above us, a shield that asks for no applause, a guardian that never takes a day off.
1: श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि आज उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। अनुजा, सबसे पहले कहाँ लेकर चल रहे हैं हमें?
0: I'll be taking you to Vijayawada, where the annual Sallakatla Brahmotsavams of Lord Sri Venkateshwar Swami at Tirumala have commenced in a grand manner. The 9-day festivities began yesterday evening with the traditional Dhwajarohan ceremony in the presence of Sri Malayappa Swami, along with Sri Devi and Bhudevi. We have a report on this.
2: The temple priest hosted the

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: And now let's take you all to Hyderabad, where arrangements have been completed under the aegis of the Union Ministry of Culture for the Telangana Liberation Day celebrations to be held tomorrow at the Secunderabad Parade Grounds. Our correspondent has more on this.
3: September 17, 1948, the historic day on which the princely state of Hyderabad merged into the Indian Union. Commemorating this historic event, the Union Government officially observes Telangana Liberation Day every year on September 17th. Held at the Secunderabad Parade Grounds, these celebrations have emerged as a special attraction over the past few years. The Union Government began official programs under the name Hyderabad Liberation Day in 2022. This year too, the parade grounds are ready for the celebrations. Vice President C.P. Radhakrishnan will attend tomorrow's main program as chief guest. As part of these celebrations, Union Minister Kishan Reddy personally inspected the rehearsals of the Central Armed Forces march past yesterday and oversaw the arrangements. In this context, a day ahead of the celebrations, former Governor Bandaru Dattatreya inaugurated a photo exhibition set up at the parade grounds to revisit historic memories. Every year, these celebrations are held on a grand scale with the participation of union ministers and dignitaries from other states. Gopakoni Saptagiri for Parikrama, Akashwani News, Hyderabad.
4: कार्यक्रम परिक्रमा में अब बात खेलों की। पुरुषों के क्रिकेट में भारत ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 14.5 ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर आसानी से जीत हासिल कर ली।
2: एंड इन सम बिजनेस न्यूज फॉर द डे, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड ओवर 0.4% हायर। The Sensex gained 333 points to close at 74,336. The Nifty added 99 points to settle at 23,218.
4: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को, बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
5: आज ही के दिन 1904 में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह राठौर का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। छठी कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। बाद में उन्होंने क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। राठौर ने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और दुर्गा देवी को लाहौर के मोजांग हाउस से फरार होने में मदद की थी।
6: उन्हें दूसरे लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार की बदसलूकी के विरुद्ध हुई 1933 की उस भूख हड़ताल में भी राठौर ने हिस्सा लिया था। इसी भूख हड़ताल के दौरान अंडमान की सेलुलर जेल में उनका निधन हो गया।
5: 16
4: आज केसरबाई केरकर की भी पुण्यतिथि है। पद्मभूषण से सम्मानित केसरबाई केरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महान गायिकाओं में गिनी जाती हैं। इनकी गायकी में शास्त्रीय परंपरा की गहराई और स्वर की अद्भुत शक्ति थी।

0: डॉर्मेटरी में जाकर कपड़े बदलो गाना गाने के लिए।
1: श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का

0: आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्म्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उन्हालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் சேவா பிரபாக் கி பிரஸ்துதி விஸ்லேஷன்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत। मैं हूं विशाल शर्मा। श्रोताओं, आज सेमीकंडक्टर यानी चिप हमारे आसपास मौजूद लगभग हर आधुनिक तकनीक का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। आपका मोबाइल फोन हो, कार हो, अस्पताल के उपकरण हो, विमान हो या उपग्रह, इन सब के पीछे चिप काम करती है। 17 सितंबर से नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में दुनिया भर की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, विशेषज्ञ, निवेशक, शिक्षण संस्थान और नीति निर्माता एक मंच पर आएंगे। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम है सिलिकॉन से सिस्टम तक, इकोसिस्टम का निर्माण। ये थीम भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा के अगले चरण को दिखाती है। अब लक्ष्य सिर्फ चिप बनाना नहीं बल्कि डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग, उपकरण, शोध और कुशल प्रतिभा से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब तक का सफर कैसे तय किया है, समझेंगे कि सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम ने इस दिशा में किस तरह आधार तैयार किया और अब सेमीकॉन 2.0 के जरिए इस व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रोताओं, भारत का सेमीकंडक्टर सफर एक दिन में शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे वर्षों की कोशिशें, शुरुआती अनुभव और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत करने की प्रक्रिया रही है। लंबे समय तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की क्षमता तो विकसित हो रही थी, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी पूरा तंत्र एक साथ तैयार नहीं हो पाया था। इस स्थिति को बदलने की दिशा

0: में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों, निवेश और उत्पादन क्षमता पर जोर दिया गया। इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में दिखाई देने लगा। आइए अब समझते हैं कि इस सफर ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की नींव कैसे तैयार की।
1: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा को समझने के लिए हमें उस आधार को देखना होगा जिस पर ये पूरी व्यवस्था तैयार हुई। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही थी। मोबाइल फोन से लेकर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तक देश में उत्पादन का आधार तैयार हो रहा था, लेकिन इन उत्पादों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश की अपनी क्षमता अभी सीमित थी। यहीं से सेमीकंडक्टर को लेकर एक व्यापक रणनीति की जरूरत सामने आई। ऐसी व्यवस्था जिसमें केवल चिप का निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी डिजाइन, पैकेजिंग, जांच, जरूरी मशीन और सामग्री, शोध और कुशल प्रतिभा तक पूरी मूल्य श्रृंखला को विकसित किया जा सके। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में हुई प्रगति ने इस दिशा के लिए मजबूत आधार तैयार किया। वर्ष 2014-15 में भारत में करीब 1,90,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2025-26 तक ये बढ़कर 13,11,000 करोड़ रुपए हो गया। मोबाइल फोन के क्षेत्र में बदलाव और भी स्पष्ट रहा। मोबाइल फोन का उत्पादन 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। आज भारत में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन देश में ही बनाए जाते हैं। इन आंकड़ों का महत्व केवल इतना ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ा, इससे ये भी पता चलता है कि भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जरूरी आधार तैयार हुआ और यहीं से सेमीकंडक्टर की अगली कड़ी जुड़ती है। अगर मोबाइल फोन, वाहन संचार व्यवस्था और दूसरी आधुनिक तकनीकों का उत्पादन बढ़ रहा है तो उनके भीतर इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण घटक यानी चिप की अपनी क्षमता विकसित करना भी जरूरी हो जाता है। इसी सोच के साथ वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस कार्यक्रम की सोच केवल कुछ चिप निर्माण इकाइयां स्थापित करने तक सीमित नहीं थी। इसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत और भरोसेमंद सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले व्यवस्था तैयार करना था। इस पूरी व्यवस्था में चिप डिजाइन से लेकर फैब यानी चिप निर्माण, पैकेजिंग और जांच, मशीन और सामग्री, शोध तथा कुशल प्रतिभा, सभी कड़ियों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। इसी दिशा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने इस कार्यक्रम को जमीन पर लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब इस प्रयास का असर परियोजनाओं के रूप में भी दिखाई दे रहा है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता है। इनमें से 3 इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू हो चुका है। इन परियोजनाओं में सिलिकॉन और दूसरे प्रकार के सेमीकंडक्टर की फैब इकाइयों के साथ डिस्प्ले निर्माण और उन्नत पैकेजिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल है। 15 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी। इसके लिए 1,27,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता को आगे बढ़ाने के साथ साथ डिजाइन, मशीन और सामग्री, शोध एवं विकास तथा प्रतिभा के क्षेत्र को भी मजबूत करना है।
0: श्रोताओं, सेमीकॉन 2.0 सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के पहले चरण से तैयार आधार को आगे बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन किसी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को खड़ा करना इस पूरी प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। चिप बनाने के लिए पहले उसे डिजाइन करना पड़ता है। इसके लिए प्रशिक्षित इंजीनियर, आधुनिक डिजाइन उपकरण, शोध और नए विचारों की आवश्यकता होती है। इसीलिए भारत के सेमीकंडक्टर सफर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है प्रतिभा और डिजाइन क्षमता का विकास। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को विस्तार से समझते हैं।
1: चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S कार्यक्रम के तहत 320 शैक्षणिक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन यानी EDA उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और 68,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है। 105 स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को भी EDA उपकरणों के लिए सहायता दी गई है। अप्रैल 2026 तक 75 संस्थानों ने मिलकर 211 चिप डिजाइन तैयार कर लिए थे। इनमें से 7 चिप अलग अलग तकनीकी स्तरों पर भी तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें 12 नैनोमीटर तक

0: की उन्नत तकनीक शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया में चिप इन सेंटर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे सी डेक में स्थापित किया गया है ताकि देश भर के इंजीनियरों, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप को चिप डिजाइन के जरूरी उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हो सके। चिप इन सेंटर की सुविधाओं का लाभ 500 से अधिक संगठनों के 1,00,000 से ज्यादा इंजीनियरों तक पहुंच चुका है। इनमें 400 शैक्षणिक संस्थान और 100 स्टार्टअप शामिल हैं। इन संगठनों ने 300 से अधिक चिप डिजाइन तैयार किए हैं। इसका मतलब साफ है, सेमीकंडक्टर उद्योग केवल बड़ी फैक्ट्रियों से ही नहीं बनता। इसके लिए डिजाइन करने वाले इंजीनियर, शोधकर्ता, स्टार्टअप और ऐसे संस्थान भी चाहिए जहां नई चिप पर काम किया जा सके। इसी सोच को सेमीकॉन 2.0 में भी जगह दी गई है। इसके 6 स्तंभों में शोध और विकास तथा प्रतिभा विकास को अलग स्थान दिया गया है। साथ ही चिप डिजाइन, मशीन और सामग्री, फैब और उन्नत पैकेजिंग पर भी ध्यान दिया गया है। भारत का सेमीकंडक्टर प्रयास अब केवल घरेलू जरूरत तक सीमित नहीं है। वर्ष 2026 में भारत पैक्स सिलिका गठबंधन में भी शामिल हुआ। ये गठबंधन वैश्विक सिलिकॉन आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर चिप निर्माण और उन्नत AI व्यवस्था तक पूरी श्रृंखला को सुरक्षित रखने पर जोर है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, 17 से 19 सितंबर तक यशोभूमि में होने वाला सेमीकॉन इंडिया 2026 इस पूरे बदलाव के कई पहलुओं को एक ही जगह सामने लाएगा। 3 दिनों के इस आयोजन में 600 से अधिक प्रदर्शक और 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। करीब 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में 150 से अधिक वक्ता अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। 6 देशों और 12 राज्यों के पवेलियन भी यहां होंगे। इसके साथ स्टार्टअप शोकेस, छात्र हैकाथॉन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन और महिला मंच जैसे कार्यक्रम भी होंगे। यानी सेमीकॉन इंडिया 2026 केवल नई मशीनें और तकनीक दिखाने का मंच नहीं है, ये उस पूरे तंत्र की तस्वीर सामने रखने का अवसर भी है जिसे भारत पिछले कुछ वर्षों से तैयार कर रहा है। एक चिप को डिजाइन करने से लेकर तैयार करने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है, लेकिन तैयार होने के बाद यही छोटी सी चिप मोबाइल से लेकर मिसाइल तक सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह सिद्धार्थ कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: नमस्कार प्राची गुड इवनिंग अर्जुन
0: गुड इवनिंग सर
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: Benchmark domestic stock market indices rise, Sensex gains over 300 points, Nifty settles at 23,218. New Zealand passes legislation to implement free trade agreement with India and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक बढ़ा निफ्टी 23,218 पर स्थिर हुआ न्यूजीलैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने के लिए कानून पारित किया और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें घटी
0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.

0: आइए श्रोताओं, बिना विलंब किए जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 333 अंक बढ़कर 74,336 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 99 अंक की बढ़त के साथ 23,218 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.2% की गिरावट आई। इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार करते रहे।
1: Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. Sensex gained 333 points to close at 74,336. Nifty added 99 points to settle at 23,218. In the broader market on the NSE, the Nifty Mid-Cap 100 index ended on a flat note, while the Nifty Small-Cap 100 index dropped 0.2%. Earlier, the markets opened on a positive note despite elevated US bond yields and crude oil prices and traded within a range throughout the session.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 2.5%, एसबीआई 2% से अधिक और एक्सिस बैंक के शेयरों में लगभग 2% की बढ़त हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में टीसीएस 2.5% से अधिक, इन्फोसिस लगभग 1.5% और टेक महिंद्रा के शेयरों में 1.3% की गिरावट आई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 18 out of the 28 sectors edged upward among the top gainers. Insurance advanced 2%, FMCG rose over 1.4%, and PSU banks added 1.1%. In contrast, Focus IT shed 1.5%, IT lost 1.4%, and telecommunications dropped almost 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,351 companies declined, 1,979 companies advanced, and 231 companies remain unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज अपरिवर्तित रूप से 95.96 रुपए पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें जो हैं उसमें गिरावट आई है, और एक तरफ हम देख रहे हैं वहीं पर अपने स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि शुरुआती बढ़त जो है उसे उसी तरीके से रेंज बाउंड में रखा है, तो ये क्या दर्शाता है, क्या इंगित करता है?
2: नहीं प्राची, जो आपने बात कही कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, मैं उसको कहूँगा कि मामूली गिरावट आई है। अभी भी हमारे लिए वो जो है अनकंफर्टेबल रेंज के बाहर है, मतलब जो कंफर्टेबल रेंज है उसके बाहर है, मतलब 100 बिलियन डॉलर। अभी भी क्रूड प्राइजेस मुझे लगता है 107 बिलियन डॉलर के आसपास है, और जो इंडियन बास्केट है वो तो तकरीबन,
0: लेकिन जो ही गिरावट आई है मे बी उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट वहाँ झलक रहा हो।
2: हाँ बिल्कुल, हाँ हो सकता है कि आज एक इमीडिएट जो आज आपने देखा बाजार जो पॉजिटिव जोन में थी वो एक कारण हो सकता है, लेकिन जो आपने बात बोली कि रेंज बाउंड है, कहीं ना कहीं एक ब्रॉड रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, और जो दुनिया में अनिश्चितता है चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो, चाहे मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है, और दिनों दिन वो स्थिति कोई सुधार नहीं दिख रहा है, अनिश्चितता जो है एकदम निश्चित हो गई है जिसको कहा जाए, तो मुझे लगता है वो बड़े कारण हैं ये। और ये सब तब है जब कि जो भारत के अपने आर्थिक जो इकोनॉमिक आप पैरामीटर्स कह लें या जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो एकदम बढ़िया हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। हमारा जीडीपी जो Q1 का आया बहुत ही उत्साहवर्धक था, नंबर 7.8 जो कि एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आया, और उसके अलावा अगर अभी भी आप इन्फ्लेशन देखेंगे ठीक है थोड़ा ऊपर आ रहा है, चूंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से दबाव है लगातार बढ़ रहा है, अब तकरीबन 5% के आसपास है, लेकिन जो रेंज है आरबीआई की अभी भी उसके अंदर है जो, तो मुझे लगता है। और जो भी आप डेटा देखेंगे, टैक्स का डेटा देखें चाहे जीएसटी कलेक्शंस का डेटा देखें, कार सेल्स या जो भी ऑटो सेक्टर में जो सेल्स हैं, तो सारा आपको पॉजिटिव साइड है, लेकिन चूंकि जो दुनिया में अनिश्चितता है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं वो हमारे बाजार पे हावी है।
1: So today, do you expect that there was short covering in the market because we saw bounce back in the Nifty Bank which went up by almost 1%, PSU Bank Index also went up. Do you see value buying in the markets right now, even though if it's for one day?
2: I think Arjun, what you're saying is I would agree more with the word value buying. I think people are also shifting more from small cap, medium, mid caps to the defense.

0: massive to the large caps, probably looking at more secure, trying in these times of uncertainty, you tend to, you know, exit the stocks or the benchmarks where you see there could be more volatility. Obviously, the first in line to take hit is obviously the small caps and the mid caps. So probably I think the intent of the investor is to shift to the safer havens, and obviously then large caps are the best bet in these times of uncertainty.
1: Also, central banks are holding their meetings. Our RBI is going to conduct its monetary policy committee meeting from October 5 to 7. Repo rate is 5.25%. Do you see rates being hiked and valuations change? Because banking incomes will also be impacted accordingly.
0: See, Arjun, more than that, I think before RBI takes a decision on the rates, on the repo rate, I think more than that, the what is being watched is the decision what tonight we get on the decision taken by the Fed Reserve on its own interest rate, because the expectation is there is a huge expectation that they would hike interest rates in US. And what happens is, and already if you look at the US bond yields, they're over 5% in since I think after 2023, it's for the first time that they have inched over 5%, the 10-year bond yield. And obviously that also puts pressure on Indian bond markets, also on the also indirectly on the Indian equity market, because then the FIIs, the foreign investors, tend to go and invest in the US market because the interest rates obviously are going to go up. And it is always said that treasury, US treasury bonds are the most secure instruments, most secure instruments in the world.
2: सिद्धार्थ, क्षेत्रीय स्तर पे जैसा कि अर्जुन ने पहले अपना सवाल पूछा, मैं उसी स्तर पर आपसे बात करना चाहूँगी कि क्षेत्रीय स्तर पे अगर हम देखते हैं तो एक आम निवेशक, एक आम जो श्रोता जो हम हमारे प्रोग्राम को सुनता है, उनके लिए आप बताइए कि अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है, या यूँ कहिए कि समझदारी भरा हो सकता है?
0: नहीं, देखिए, एक तो मैं पहली बात ये कहूँगा कि अगर आप इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय बाजारों में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं
2: जी,
0: तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, धैर्य के साथ आएं, क्योंकि दुनिया में बहुत अनिश्चितता है और ये अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है, और ये जो अभी तक एक फंडामेंटल्स, बहुत सारे जो फंडामेंटल चीज़ें हम मानते थे कि जब भी अनिश्चितता आती थी या तेल की कीमतें बढ़ती थी या वॉर आता था, तो ये हमेशा माना जाता था कि गोल्ड प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं, इस बार भी बढ़ी हैं, लेकिन उस अनुपात पे नहीं बढ़ा गोल्ड, इनफैक्ट बीच में जब अनसर्टिनिटी बढ़ी तो हमने देखा गोल्ड प्राइसेस नीचे भी आई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ, चूंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारे साथ एक जो एक मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो है क्रूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल, जो कि हम 90% इंपोर्ट करते हैं, और क्रूड काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के लिए क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल, द मेस मटेरियल विच एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा, और अभी वो लग रहा है कि रहेगा लंबे समय तक। सप्लाईज नहीं मुझे लगता इम्पैक्ट होगी, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे भी इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा बहुत अगर आप भारतीय बाजारों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा लंबी अवधि, मतलब मेरा मानना है कि कम से कम 3 साल का मन बना के आए, कि मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले साल बहुत मुनाफा हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में ये रख के आए कि थोड़ा आपको समय वेट भी करना पड़ सकता
2: है। क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि जब बाजार ढलान पर हो, तब खरीदारी, असल खरीदारी उसी वक्त होनी चाहिए।
0: हाँ, लेकिन प्राची होता क्या है कि जब भी आप देखेंगे कहीं अनिश्चितता आती है या कहीं डर होता है, भय होता है, तो हर आदमी बहुत अपने डिसीजन को बहुत ना कैलकुलेटेड, या आदमी सोचता है थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ी स्थिति जो काले बादल हैं वो छट जाएं तब लगाएंगे। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, अगर मुझे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर ऐसे वक्त को चुनूंगा निवेश करने के लिए, लेकिन हाँ, मैं ये भी साथ में कहूँगा कि बहुत बढ़िया से अपनी जो है फैक्ट फाइंडिंग बढ़िया से करें, अच्छी कंपनियां चुने। और आपने जिन क्षेत्रों की बात की, तो मैं वहां पे आजकल जो नया, एक तो जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नए क्षेत्र हैं, स्पेस है, डिफेंस है,
2: ईवी है,
0: बहुत बढ़िया आपने बोला, उसके साथ साथ फार्मा हमेशा एक डिफेंसिव क्षेत्र है, तो मैं बोलूँगा ऐसे अच्छा, FMCG को भी मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि इंडिया की जो कंज्यूमर स्टोरी है, जो कंजम्पशन स्टोरी है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है।
1: सो स्पीकिंग अबाउट इन्फ्लेशन इंपैक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स अर्लियर एंड देन

0: linking it to FMCG because their margins have always been affected by business inflation at the wholesale price index level. But that went up by 1.4% today. You said that it's a good sector to get into, especially long term. What are the other factors that one can look into when it comes to FMCG, fast moving consumer goods?
1: See, Arjun, I would say as far as fast moving consumer goods, I think it is always it's an area which I think always is you will always have stays in green. I don't see very lot of challenges for
0: like pharmaceuticals.
1: yeah, because FMCG is what do we mean by FMCG? What the products which you goods and products which we consume on a daily basis. So I think the demand in India is the consumption demand is intact, and even there was a fear in some about a month back or 15 days back that our monsoons have not fared that well. But I think as time passed on, even monsoons have been good. Agriculture sector is doing good. So I see the rural demand also intact, and inflation for us has still not passed on or has not grown so rapidly. So I think, and as far as RBI guidance, if we have to go by their guidance, so they do not see it going beyond 6% for the entire year. So I think if inflation also remains under control, so I don't see FMCG companies passing on no prices, or we see prices going up sharply.
0: What about information technology? That saw a drop in valuation today. It saw a drop in valuation yesterday also, despite their earnings being good.
1: I think, Arjun, in the near term, IT valuations have been taking a hit, and not to obviously say about today or yesterday, but I personally believe that Indian IT industry is very robust, very strong, and already we are seeing there are a lot of questions being raised on the way we are seeing artificial intelligence or the uncertainty being created by artificial intelligence. So I think it's a good value buying if you ask me. But yes, one should wait and watch, and I think probably invest in small tranches.
2: अन्य खबरों पर भी सिद्धार्थ आपसे बात करेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं कि दरअसल अन्य खबरें हैं क्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ पाएंगे।
3: पुराना जो कैप था वो सितंबर 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था, तब से अब तक एवरेज जो सैलरी है वो काफी बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है। आज एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की एवरेज इनकम करीब करीब 23,000 रुपए पर मंथ है, जो कि पहले से करीब 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीज एवरी ईयर।
2: सिद्धार्थ, विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक सुरक्षा की बात आती है, उससे ये किस तरीके से कनेक्टेड है और कैसे लाभान्वित करेगा?
1: नहीं, मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन, जैसे मंत्री अश्विनी
2: जी
1: वैष्णव मंत्री जी ने भी बोला
2: जी
1: अपने अनाउंसमेंट में, क्योंकि अब आप अगर उसको 15,000 से 25,000 कर रहे हैं तो, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 25,000 जिसकी 25,000 तक जिसकी सैलरी है उसको अनिवार्य रूप से, जो सबसे बड़ी चीज यहाँ आती है कि कंपलसरीली आपको ईपीएफओ के दायरे में लाया जाएगा, या कंपनी आपको ईपीएफओ का जो बेनिफिट है, जो सोशल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है, उसमें आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर द इयर्स जैसा उन्होंने बोला 2014 में पिछले लास्ट रिवीजन हुआ था 15,000 तक, तो उसके बाद से बिल्कुल ठीक बात है कि अब सैलरीज बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो किसी भी एवरेज सैलरीज 23,000 जो उन्होंने जिक्र भी किया, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
2: क्या ये बदलाव असंगठित क्षेत्र से जो संगठित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता, एक नई किरण के तौर पर हम देख पाएंगे इसे?
1: नहीं प्राची, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार के जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए तो एक पेंशन होती है उनकी, अब चूंकि थोड़ा उसका एक रूप प्रारूप बदल गया है, जो सरकारी एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है, तो न्यू पेंशन पॉलिसी आ गई है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी जो लोग आज रोजगार पाते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और का जो ईपीएफ का जो सोशल सिक्योरिटी का जो ये नेटवर्क है या ताना बाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको पेंशन भी देता है, ना केवल आपको आपकी आपको

0: आपका एक अंशदान जाता है जो आपको जब आपकी सेवाएं समाप्त होती हैं 60 साल पे, वो पैसा मिलता ही है, उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है, क्योंकि आज मुझे लगता है किसी भी सेविंग स्कीम में सोशल सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट है तो वो एम्प्लॉय ईपीएफओ की में ही मिलता है, तकरीबन 8% का इंटरेस्ट रेट है आज भी, तो वो उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। साथ हमने कवरेज बढ़ाया है, तो अब ज़्यादा लोग, जैसा 51 लाख की जो आपने फिगर पढ़ी, तो उतने ज़्यादा लोग और अब इस कवरेज के पात्र होंगे। जी,
1: In more news, India's current account deficit widened to $7 billion in July 2026 from $3.2 billion a year ago, primarily due to a higher merchandise trade deficit. As per data from RBI, the merchandise trade deficit rose by $3.5 billion to $31.7 billion in July on an annual basis. According to the data, net FDI inflows rose by $2.8 billion from a year earlier to $7.3 billion.

0: more steps in that in step in that direction.
1: अन्य खबरों में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने सोने और चांदी की वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग शुल्क में बदलाव किया है। सोने के लिए हॉलमार्किंग शुल्क 45 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति वस्तु कर दी गई है, जबकि चांदी के शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदले हुए शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे।
2: गवर्नमेंट हैज क्लेरिफाइड दैट देयर विल बी नो चार्जेस एट ऑल फॉर पर्सन टू पर्सन UPI ट्रांजैक्शंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर्ड। Finance Ministry said that the payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all person-to-merchant transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. The ministry said that MDR is neither a tax nor a charge collected by the government or National Payments Corporation of India. It is distributed among payment ecosystem participants, including banks and payment application providers to support the operation and continued expansion of the UPI ecosystem.
1: आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 1.5% बढ़ा, जबकि जापान के निके सूचकांक में 0.7% की वृद्धि हुई। यूरोपीय शेयर बाजारों में लंदन का फुटसी 0.6% बढ़ा, जबकि जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लगभग 0.5% ऊपर कारोबार करता नजर आया। आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटेन का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर पिछले महीने सालाना आधार पर 3.1% हो गया, जो जुलाई में 2.9% था। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में मुख्य महंगाई दर 2.6% रही, जो पिछले महीने के बराबर ही थी। सिद्धार्थ, ये क्या इंगित करता है इस समय जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए?
0: नहीं, देखिए, जहाँ तक जापान की बात है, जापान में मुझे लगता है पहली बार अभी तक डिफ्लेशन था, तो पहली बार अब इन्फ्लेशन की वजह से मुझे लगता है जापानीज मार्केट्स में हमको इतना पॉजिटिव वो दिख रहा है। लेकिन हालांकि वहाँ पे अभी भी जो उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का अभी भी जो एक्सपेंडिचर है, वो काफ़ी हाई है। तो अभी मुझे लगता है अर्ली डेज, बट यस, देर इज़ गुड न्यूज़ फॉर देम इन टर्म्स ऑफ AI, ऑटोमेशन, इन इस तरह, और जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स वहाँ पे किए हैं, तो कंपनियों के रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें वहाँ की मार्केट्स में एक जो है अपटिक दिख रहा है। साथ साथ जो कॉस्पी की आपने बात कही है, वो मतलब आप सबको पता है, क्योंकि दो ही बड़े कारण है उसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दो बड़ी कंपनियाँ जो चिप्स बनाती हैं, तो वो उनकी वजह से वो जो है उस एक्सचेंज में बड़ा दिखती है।
1: जी,
2: मूविंग ऑन टू द US स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट एक्सटेंडेड इट्स सेल ऑफ यस्टरडे विद राइजिंग US ट्रेजरी यील्ड्स, ग्रोइंग डेट कंसर्न्स एंड सर्जिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस वेइंग ऑन इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अमंग द मेजर इंडस्ट्रीज, NASDAQ कॉम्पोजिट डिक्लाइन 0.8%, S&P 500 ड्रॉप 0.6%, एंड द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फेल ऑलमोस्ट 0.5%। Market participants will be closely watching the outcome of the FOMC meeting later tonight, along with comments from Fed Chair Kevin Warsh for clues on the central bank's future policy direction. Last month, in his debut speech at the central bank's annual symposium in Jackson Hole, Wyoming, Fed Chair Kevin Warsh said that the Fed's predominant focus should be on prices, noting that inflation remains above its target.
3: And it's the Fed's job to make sure that inflation expectations do not get unanchored. Now, there is one signal nobody can miss. The responsibility for 65 months of sustained elevated inflation sits squarely with the central bank, and that's where it belongs. So here is my standard. We must be confident that underlying inflation is moving to our objective clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do. That's our job. That's our mandate, and that's our charge to keep. I are hardly the first to hold.
2: Siddharthji, before we take the story on crude oil and its how it's causing inflation globally, central banks are taking a decision. It's not just the U.S. Fed Reserve, where the Fed funds rate right now effectively is 3.63%, but Bank of Japan, 1%, they're looking to raise their interest rate. Bank of England is also going to have its meeting. 3.75% is their interest. How do you see central banks reacting right now in such a way that the global economy and their own nations are not affected?
0: See, I think it's only to basically contain prices, as we heard the Fed Reserve Chairman, Fed Governor Kevin Warsh saying very clearly that they have to anchor inflation and the

0: expectations also. So I think, and it is all due to the high Middle East crisis, which has led to the crude oil prices and which is feeding into the inflation.
1: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.2% down at $107.44 per barrel in intraday trade at a time of writing this report. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading 1.8% lower at $103.93 per barrel.
2: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 1% की बढ़त के साथ 1,52,362 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 1.1% की बढ़त के साथ 2,31,337 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। संक्षिप्त में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी सोने और चांदी के भाव पर।
0: मुझे लगता है प्राची, अभी गोल्ड और सिल्वर, मुझे लगता है दोनों में ही हम रेंज बाउंड एक्टिविटी देख रहे हैं, और मुझे आने वाले समय में ऐसा कोई स्पर्ट नहीं दिखाई दे रहा अनटिल अनलेस मतलब ग्लोबली कोई ऐसी बड़ी क्राइसिस जो अभी है उसमें और स्थिति खराब हो जाए तो शायद गोल्ड, हालांकि ये मैं जरूर मानता हूं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा मॉडरेट नहीं करेंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक्स भी बहुत बड़े पैमाने पे अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद आप दोनों का।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex gains over 300 points. Nifty settles at 23,218. New Zealand passes legislation to implement FTA with India, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है।

0: श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the cabinet meeting in New Delhi today. He said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
2: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 lakh employees ko iska benefit milega, jo ki 15 to 25 wale band mein the, they will start getting covered in the new PF rules. Bharat Sarkar ka is pe estimated government expenditure rahega about 11,339 crore rupees every year.
1: The government has declared Pakistan-based Shehzad Bhatti Network as a terrorist organization under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. The terrorist group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youths and petty criminals into terrorism. The Union Home Ministry has issued gazette notification in this regard. The ministry said the decision was taken in keeping with Prime Minister Narendra Modi's vision of adopting a zero-tolerance approach towards terrorism. The government has introduced an exemption from the requirement of registration cum membership certificate or certificate of registration for small value export consignments up to 3 lakh rupees. The Ministry of Commerce and Industry said the measure is aimed at reducing the compliance burden for new and small exporters and facilitating exports through postal, courier and other emerging channels. A special court of the National Investigation Agency at Jagdalpur in Chhattisgarh today sentenced all 10 convicts to death in the 2013 Jhiram Valley Maoist attack case. The convicts have been given 30 days to appeal against the verdict in the High Court. The attack took place on the 25th of May 2013 in Jhiram Valley in Bastar district, killing 27 people, including several senior Congress leaders, and injuring 35 others. The External Affairs Ministry today summoned the Charge d'Affaires of the High Commission of Pakistan

0: से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री

0: अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग

0: 11,349 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
1: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3,00,000 रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और

0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
3: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
4: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में

0: दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
1: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी दुकान, एक मोबाइल स्क्रीन और कुछ सेकंड में भुगतान पूरा। न कैश गिनने की जरूरत, न छुट्टे पैसे की तलाश, न बटुए में नोट रखने की चिंता। एक क्यूआर कोड, एक मोबाइल और पैसा पहुंच जाता है पलक झपकते ही। यही है आज का भारत, जहां यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर बड़ी खरीदारी तक, छोटी दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है यूपीआई। लेकिन जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए तो एक सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाता है, इसे चलाने की कीमत कौन चुका रहा है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी चर्चा। पिछले दिनों यूपीआई पेमेंट्स को लेकर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और सीनियर बैंकर के साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्र। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: इससे पहले कि अपने दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बता दें कि जो नया एमडीआर फ्रेमवर्क आया है उसके 5 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। व्यक्ति से व्यक्ति को किया गया यूपीआई भुगतान पूरी तरह से एमडीआर फ्री रहेगा। छोटे मूल्य के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी 2,000 रुपए तक के भुगतान पर एमडीआर नहीं लगेगा। 2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। ये ग्राहक से लिया जाने वाला यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है बल्कि मर्चेंट साइड फ्रेमवर्क है। जिन छोटे दुकानदारों की या कारोबारियों की यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट्स 1,00,000 रुपए हर महीने है, उनके लिए 0 एमडीआर व्यवस्था जारी रहेगी। 75,000 से अधिक के एलिजिबल ट्रांजेक्शन पर एमडीआर अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा, यानी ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ एमडीआर अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। तो ये हैं वो 5 इंपॉर्टेंट पहलू जो एमडीआर के नए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। विकास जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एमडीआर, जिसकी बहुत चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों में है, ये है क्या और यूपीआई की इस पूरी कहानी में इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
2: देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि यूपीआई आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन इसे चलाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है ना केवल वो स्पीड के साथ हो, एक्यूरेट हो, लेकिन वो सुरक्षित भी हो। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है और हमें इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ताकि साइबर सिक्योरिटी ना हो, संबंधित कोई समस्याएं ना हो, फ्रॉड ना हो। तो ये कस्टमर्स प्रोटेक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कस्टमर्स प्रोटेक्शन, के लिए उनकी सुरक्षा के लिए इनोवेशन की आवश्यकता रहती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आज की तारीख में 56 करोड़ लोग अनबोर्ड हो चुके हैं और लगभग 6.5 करोड़ आपके छोटे बड़े मर्चेंट इसमें शामिल है, लगभग 750 बैंकों के साथ भी ये लिंक। तो कितना बड़ा, जिसको मैं समझता हूँ ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं होगा जहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे किसी पेमेंट सिस्टम में, इतने मर्चेंट्स जुड़े होंगे और तो और इसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है और लगभग 1 ट्रिलियन जो पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये

0: स्वाभाविक है जब काम इतने बड़े स्केल पे हो जाए तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की खर्चा कौन बियर करेगा, उसमें ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे काश्तकार है, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इसका कोई उनके ऊपर कोई इसको नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट, विशेष रूप से छोटे काश्तकार हैं। लेकिन ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट से करने से हम बच नहीं पाएंगे, ताकि क्योंकि सुरक्षा भी इतनी ही आवश्यकता है जितना की गति है और पारदर्शिता है। तो मैं समझता हूँ उसमें जो आपकी जो प्लेयर्स इसमें है, उसमें आपका TPAP जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है। फिर उसमें एक PSP बैंक है जो कि वो दरवाजा खुलता है और बैंकों के साथ जोड़ता है, मतलब बैंकों के साथ या आपकी NPCI के साथ जोड़ता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे बात, दोनों बैंक है, एक बैंक जो जिसमें डेबिट होता है पैसा कस्टमर का, और मर्चेंट का बैंक है जहां पैसा क्रेडिट होता है। तो ये सारे एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व है, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। तो अब सरकार ने ये प्रावधान तो रखा है कि 2000 तक इसमें कोई शुल्क नहीं लेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट 2000 से ज्यादा अगर हो तो उसमें एक सीमा रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक का उसमें MDR लगेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट। ये पैसा जो है, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले बैंक्स, PSP बैंक जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, और जो रिसीविंग बैंक और पेइंग बैंक, ये सब में ये पैसे बटेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट और कर पाए, मशीनरी में, IT में और पैसे लगाए।
1: जी विकास जी, जब हम MDR की चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी होगा कि MDR का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान है, चूंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, सुविधाजनक बन सके और 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम इस MDR फ्रेमवर्क पर एक के बाद एक डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि MDR और भारतीय अर्थव्यवस्था का समायोजन किस तरीके का है।
0: कोई भी अर्थव्यवस्था हो, आजकल हम IT में इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम पुख्ता हो, जो एनेबलिंग सिस्टम है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा, तो MDR से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे। ये MDR के जो भी पैसे इसमें मार्जिन से लिए जाएंगे तो वो पैसे जाएंगे ये स्टेक होल्डर्स के पास, जो लोग UPI प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना, देयर आर 3-4 प्लेयर्स जो उसमें हैं। तो अब देखिए, जनधन के माध्यम से लगभग 60 करोड़ खाता खोला है और अभी केवल 56 करोड़ हमारे, एक तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है 56 करोड़ लोग आ गए हैं, दूसरा ये है कि इसमें और भी स्कोप है लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए। गाँव के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो नॉर्मल फोन है या फोन है भी नहीं, तो वो सब लोगों को अभी अनबोर्ड करने का और स्कोप है। और हम कैशलेस इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें UPI को अपनाएं। तो इसमें अभी और भी स्कोप है। तो ये कहा जाता है एक कि इसको जीरो जो MDR रेट है और कुछ दिन चलता है, और उसके बाद में जब और लोग अनबोर्ड हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ रेट शुल्क लगता है, उसमें शुल्क लग रहा है मार्चेंट की जो ट्रांजेक्शंस के ऊपर, ये UPI के ऊपर नहीं लग रहा है
1: जी।
0: कोई शुल्क, ये ट्रांजेक्शंस जो होगा मार्चेंट, उसमें भी 1 लाख तक जो छोटे काश्तकार, छोटे MDR वाले हैं, उनको सब्जी वाला है, चाय वाला है, 1 लाख तक वो पर मंथ जब उनके पास एक ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसके ऊपर उनको कुछ P2 वो आते हैं उस कैटेगरी में P2PM, तो पर्सन टू पर्सन मर्चेंट, उसमें कोई उनको शुल्क नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से किसी महीने में ज्यादा हो गया, अगले महीने कम हो गया, 3 महीने का एवरेज देखा जाएगा, वो एवरेज में अगर ज्यादा हो गया तो फिर उनको उस हिसाब से शुल्क लगेगा, जैसे ही बना गया है 0.04% और वो 300 रुपये की सीमा है। तो ये छोटा सा रकम है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा इसमें समय लगेगा इसको स्टेबल होने में, पर मैं समझता हूँ कि इसको लोग अपनाएंगे और मार्चेंट्स भी अपनाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सुविधा है। अब मैं समझता हूँ छुट्टे की प्रॉब्लम है, कैश के गंदे नोट का प्रॉब्लम है, और फिर दोबारा उसमें नहीं जाएंगे लोग।
1: शरद जी, कार्यक्रम में अब तक हमने समझा कि MDR क्या है और नए MDR फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण बातें भी हमने श्रोताओं के साथ साझा की। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब UPI लॉन्च हुआ तब इसे फ्री रखा गया, अब जब डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका है तो इस चरण में MDR की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की जो कीमत है, सरकार इससे वो वसूली करना चाहती है?
2: नमस्कार, आप

0: को भी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं, तो इसको हम इसी प्रकार से देखें कि 20,700 करोड़ रुपए इसको साल का चलाने का खर्चा आ रहा है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, किसी साल 2100, किसी तो 2200, किसी साल 1900 करोड़ रुपए सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, एक तरह से सब्सिडी थी ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया और इस प्रकार ये फैल गया, लोग इसके इतने आदि हो गए, और जो इसकी सुविधा थी आप पलक झपकते ही किसी को कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे अपग्रेड रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसको सस्टेनेबल तभी बना रहेगा अगर इसमें कोई छोटी सी फी लेके और इसमें लोगों को सुविधा जो मिल रही है वो लगातार निरंतर मिलती रहे। दूसरा, इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इशू है। कल को आपके सारे बैंक अकाउंट्स यूपीआई के जरिए जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं, जो आप बैंक अकाउंट ओटीपी के जरिए अप्रूव करते हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसमें जुड़ जाता है, लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट्स उस इंटरफेस में जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट ऐप है वो ऐप भी अपना पूरा एडमिन, तो हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे लिए एक क्यूआर कोड हमने स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया, पर उसके पीछे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये इसमें समझने वाली बात है कि खाली आपने क्यूआर कोड डाला और पेमेंट हो गया, ये तो ठीक है, आपको तो सुविधा मिल गई, जिसने पेमेंट लेनी थी उसको भी मिल गई, परंतु इसके पीछे जो पूरी प्रणाली चल रही है उसके पीछे खर्च आता है, उसको मेंटेन करना है, उसमें नए नए अपग्रेड लाने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाना है। तो ये सही है बात के जो छोटे व्यापारी हैं 2000 से नीचे पे तो है ही नहीं, आपको पता है जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे, और P2P पर्सन टू पर्सन आपने अपने दोस्त को पेमेंट करी, रिश्तेदार को पेमेंट करी, जो कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, वो अभी भी वैसा ही बना रहेगा चाहे कितना भी अमाउंट हो, सिर्फ वहां लगाया गया है। जहां MDR को मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार आ रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड यहाँ सालों से दशकों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो अभी भी तो आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करते हैं, जो व्यापारी आपसे पेमेंट लेता है उसके ऊपर 1% कहीं 1.5%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो मुझे याद है 3-3.5% तक भी कई दफे ले लेता है, तो बकायदा मर्चेंट का वो कटता है। अब मर्चेंट क्यों देता है उसको, मैंने बहुत सारे मर्चेंट से इतने सालों में बात करी कि मैंने कहा भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों लेते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए लेते हैं कि ग्राहक अगर 10 ग्राहक हमारे यहाँ आए और उसमें से 4 ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड है, हम उनको मना कर देंगे, हमारे यहाँ तो साहब ग्राहक पीओ ऐसे नहीं है, कार्ड लेने की सुविधा नहीं है, तो वो ग्राहक वापस चले जाएंगे, वो ग्राहक यहाँ नहीं आएंगे, तो उसको सुविधा देने के लिए हम अपने प्रॉफिट पर थोड़े से चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे और हम उस ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ही है क्योंकि अब कैश का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लोगों को घर से वॉलेट जेब में रखने की आदत नहीं है, जेंजी तो बिना पैसे लिए चलते हैं, बहुत सारे मुझे यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी जेब में कोई कैश नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास UPI है, तो हमें कैश की जरूरत ही नहीं है, कहां नहीं चलता है ये। तो इस बात को देखते हुए जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा 315 लाख करोड़ का साल में ट्रांजेक्शन होना, 24,000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर ट्रांजेक्शन इसकी क्या कॉस्ट आती है अभी जिस लेवल पर है, तो उसमें पर ट्रांजेक्शन हमारी 86 पैसे मैंने देखा कॉस्ट आ रही है, अगर 24,000 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे, कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन हो 86 पैसे उसकी कॉस्ट आती है। तो इससे ये जो 0.4% अभी लगा है, पहली बात तो इसमें 300 रुपए पे कैप लगा के बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 75,000 रुपए से ऊपर का आप कितने का भी ट्रांजेक्शन करें वो 300 ही रहेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इसको रीलुक किया जाएगा, और अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार के पास सुझाव आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया अभी 15 अक्टूबर से लगना है, हो सकता है कि इतने सारे सुझाव आ रहे हैं, मर्चेंट से छोटे छोटे बात हो रही है, हो सकता है इस पे पुनर्विचार किया जाए, आगे जाके 0.4% को कम किया जाए। मैंने एक अपनी तरफ से निजी सुझाव दिया था कि जो बिजनेसेस जिनका मार्जिन कम है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो वॉल्यूम पे काम करते हैं, 1-2%, 3% उनका मार्जिन होता है, उनको लग रहा था कि भाई 0.4% तो हमें बहुत चुभेगा, तो मैंने सुझाव दिया था कि उन व्यापारियों के लिए जहां पर प्योर ट्रेडिंग है और मार्जिन कम है, वहां पर इसको 0.1% या 0.2% आगे कभी हो सकता है सरकार इस पे विचार करे। तो मुझे लगता है इसको एंड ऑफ द रोड नहीं देखना चाहिए और इसको खाली एक नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
1: जी विकास जी, अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि MDR का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक ही पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि ग्राहक से MDR नहीं लिया जाएगा, जो दुकानदार है वो MDR का भुगतान करेगा। इस अंतर को हम कैसे समझें?
2: सर कोहली साहब से मैं सहमत हूँ, यानी एक ही बात है कि इसमें जो हाईवेज की अपने एग्जांपल दिया, वो पैसे सरकार को जाती है, वो कंपनी को जाती है, तो यहाँ पैसे जो है ये स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा, PSP बैंक, PPAP और जो कंसर्न बैंक है। और रहा जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात, तो कहा सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, सस्टेनेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कोई भी प्रोसेस हम करें, और इतने बड़े स्केल पर ये काम आ गया है जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है व्यवस्था में, MDR मर्चेंट साइड चार्ज है, तो कंज्यूमर में जो कोई भी इसके चार्जेस नहीं लगना चाहिए, और ऐसे जो प्रावधान ऐसा ही है

0: कि इसमें जो मर्चेंट्स हैं ये इसको पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर को, उसमें करने से उनके दो नुकसान हो सकता है। अगर पास ऑन करते हैं तो उनके जो कंपिटिटर है उनके पास लोग चले जाएंगे। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक इंटरव्यू नेहरू प्लेस का किसी ने कोई सर्वे किया है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये दिया है इंटरव्यू के बाद। दूसरा, जो अनबोर्डिंग कराते हैं अपने एप्स, जैसे गूगल है, यूपीआई है, पेफोन है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उनको कम बेनिफिट्स देंगे जिसके तहत वो कंपनसेट उसमें हो जाएंगे। और रहा आपके एसेंशियल सर्विसेज में, वहां केवल 5 रुपए में आपके रेलवे टिकट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें केवल 5 रुपए चार्ज रखा गया है, वो भी जो ऐप जिसका है उसी से वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तो ये जो है इसको हो सकता है रिकंसिडर हो जाए, जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें पेमेंट और कम हो जाए या नील हो जाए। दूसरा, जो 1 लाख का उन्होंने रखा है सीमा छोटे एमडीआर के लिए, हो सकता है उसको और बढ़ा भी जाया जाए, 3 लाख कर दिया, 4 लाख कर दिया जाए, 1 लाख हो सकता है, कम है आज के तारीख में। तो मैं समझता हूँ ये जब शुरुआत होगी 15 अक्टूबर को, हो सकता है 3 महीने के बाद जब ये देखा जाएगा प्रणाली कैसे चल रहा है। ऐसा तो नहीं है फिर लोग फिर एटीएम में जा रहे हैं, रुपए कार्ड में जा रहे हैं या कैश से भी ट्रांजेक्शन किया है, ये कतई मैं समझता हूँ सरकार इसको कभी एनकरेज नहीं करेगी इस बात को। और इसके हो सकता है उसके कोई हल निकालेंगे, वो सबका थोड़ा और रेशनलाइज हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा ना, इट इज नॉट एंड ऑफ द रोड, इट इज नॉट एंड ऑफ द डे, तो मैं समझता हूँ इट इज डायनेमिक सिचुएशन, ये ऐसा ना इसे फ्लेक्सिबल सरकार का रुख रहेगा, मुझे ये मानना।
1: शरद जी, अगर इसी पहलू को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, जो सरकार कह रही है कि दुकानदार या जो भी व्यापारी हैं वो 0.4% एमडीआर वहन करेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब दुकानदार पर 0.4% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने उत्पाद का जो मूल्य है वो बढ़ा देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है वो कैश पेमेंट एक बार फिर प्रचलन में आएगा और दुकानदार कह सकता है कि जी आप हमें कैश पेमेंट करिए क्योंकि मुझे तो 0.4% वहन करना पड़ेगा। क्या इसको लेकर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन भी है कि दुकानदार ऐसा नहीं कह सकते हैं और वो अपने उत्पाद का मूल्य इस अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं?
2: देखिए, इस बारे में भी मैंने सुझाव के रूप में, मैं बहुत सारे इंटरैक्शंस कल जब से आया है ये कर रहा हूँ, मैंने सुझाव के रूप में इसमें भी एक बात रखी। आपने बात ठीक कही, क्योंकि जब छोटे व्यापारी जो हैं जिनसे बात की गई उनका ये कहना था कि भाई, एक व्यापारी ने तो ये भी शब्द इस्तेमाल किया जी, तेल तो तिलों में से निकलता है, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई हम इसको क्यों बियर करेंगे, हमारा तो मार्जिन कम है, ये ग्राहक को बियर करना चाहिए, हम नहीं बियर करेंगे। तो अभी जब क्रेडिट कार्ड यूज होता था एमडीआर के मामले में तो उसमें 2 तरीके से चार्जेस रिकवर कर रहे थे कुछ एक व्यापारी। कुछ तो सीधा कह देते थे कि जी हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे आपसे, पर आपको जो हम उनसे बैंक चार्ज लेता है 2%, 1% वो आपको एडिशनल हमको देना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए 10,000 रुपए की चीज है तो आपसे वो 200-300 रुपए फालतू ले लिए जाते थे कि भाई ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड से करने की, आप हमें फालतू दीजिए। कुछ लोग इसको मान भी जाते थे और दे देते थे। दूसरा तरीका जो व्यापारी अपनाते थे वो ये थे कि वो कीमत बढ़ा देते थे, यानी कि आपसे वो अलग से कोई चार्ज कह के नहीं लेते थे, पर मान लीजिए कोई चीज 10,000 रुपए की है तो पहले से ही उसको 10,200 रुपए उसकी कीमत रख दी, जिससे वो एडिशनल 200 रुपए में जो उनको एमडीआर भुगतान करना पड़ता है वो करे। तो मैंने सुझाव रूप में इसमें रखा, क्योंकि मंशा एमपीसीआई की सरकार की ये नहीं है कि ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाए, पर क्योंकि व्यापारीगण जो है वो इस प्रकार की सोच रहा है कि हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि एक कंज्यूमर हेल्पलाइन साथ में निकाली जानी चाहिए, जिसमें कि जो भी ग्राहक हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो तुरंत वहां फोन करके पिक्चर खींच के अपलोड करके डाल सके कि मैंने इस दुकान से इस समय सामान खरीदा और मुझसे एमडीआर के रूप में अलग से वसूली की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि जितने दुकानदार हैं वो खुद उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, घर जाते हैं, वो भी सामान खरीदते हैं, पर इस बात को लेके आशंका है। और ये आशंका, आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए, हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के, अगर मैं महीने के 2,000 करोड़ ट्रांजैक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन हो गए। अब 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या ग्राहक ने अपनी मर्जी से कैश पेमेंट करी या एमडीआर का जिक्र कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये मॉनिटरिंग और ये 24 आवर विजिलेंस रखी जाए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आगे चलेगा और अगर ऐसा लगा कि कैश टू जीडीपी रेशियो जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र में, वो बढ़ रही है, कैश की डिमांड सडनली एकदम से बढ़ गई है जब से आया है, इसका अर्थ ये होगा कि भाई जो जरूरत है कैश की वो ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब लोग जो है या यूपीआई के आपको नंबर्स कम होते दिखाई दिए, जिस रफ्तार से यूपीआई पिछले 10 साल में बढ़ा है आपको वो सडनली ग्रोथ कम होती दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है जैसा मैंने पहले कहा कि इस पे देन देयर विल बी अ रीथॉट एंड देयर विल बी अ रीविजिट कि हम इसको फिर से सोचें कि अगर लोगों को इस प्रकार से परेशानी हो रही है और जो

0: मर्चेंट्स हैं वो पास ऑन कर रहे हैं लोगों को। और इस समय दिक्कत क्या है कि इस समय महंगाई की जो दर है सीपीआई वो 4.82 आई है
1: जी।
0: तो लोगों को थोड़ा सा महंगाई का जो पेन है वो फील हो रहा है। इसमें तो कोई हम इनकार नहीं सकते, तो ऑथराइज जो आधिकारिक आंकड़े निकल कर आए हैं हमारे सामने ही है। उसमें अगर ये और जुड़ जाता है, ये अगर दुकानदार इस प्रकार करने लगते हैं या वेंडर्स इस प्रकार करने लगते हैं लोगों के ऊपर पास ऑन, मुझे ऐसा एक और मेरा सुझाव था कि दो हिस्सों में वेंडर्स को बांटे जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जो बड़े वेंडर्स हैं जो बड़ा काम करते हैं वो तो एमडीआर को पास ऑन नहीं करते हैं, बड़े होटल्स

0: अब भी आप समझते हैं बनी रहेगी?
1: मैं समझता हूँ इसमें दो बातें हमें देखना चाहिए। एक कि 96% रोज जो एक लगभग आपके 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें से 96% से ज्यादा भी है आपके 2000 वाले, तो बाकी बचा 4% का सब हम जो जितने भी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो रिमेनिंग 4% ऑफ द ट्रांजेक्शन इसकी बात हम कर रहे हैं। छोटे मर्चेंट्स के लिए ये जो 1 लाख का उन्होंने सीमा लगाया है, मैं समझता हूँ इसको सरकार को हो सकता है इसको रिव्यू करेंगे और कोई 3-4 लाख का, क्योंकि आजकल 1 लाख रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है और रोज उसकी जो है कोई भी सब्जी वाला भी आजकल 500 रुपये में कोई सब्जी खरीद के ले जाता है, तो मैं समझता हूँ अगर उसके पास 20 लोग आ गए तो मैं समझता हूँ 10,000 रुपये दिन में हो गया, तो इस हिसाब से उसका 1 लाख रुपये थोड़ा सा कम लग रहा है। हो सकता है इसको सरकार रिव्यू करेंगे और इसको थोड़ा हम उसकी बढ़ाएंगे सीमा, पर असली बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसेंशियल सर्विसेज को उनका लगभग उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आप रेलवे टिकट है और इंश्योरेंस पेमेंट है, इस तरफ से जो भी एसेंशियल सर्विसेज है 5 रुपए रखा गया है वो भी ऐप वाला से लिया जाएगा। तो मेरे विचार से तो यूपीआई पर एमडीआर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज जरूर है और यूपीआई को फ्री रखना बहुत अच्छा था, लेकिन वो एडॉप्शन अभी 56 करोड़ हो गए हैं, आगे चल के और बढ़ेंगे, तो दिस हैज बिकम क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं आजकल बढ़ रहा है, तो इनोवेशन की आवश्यकता है, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इन 4% जो आपके ट्रांजेक्शन है उनमें से कुछ रकम आ जाएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट में सहूलियत रहेगी। बाकी यूपीआई का कोई विकल्प नहीं है जहां हम खड़े हैं इस समय, और ये कोई भी आदमी पूरी कैश इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, शुरुआती तौर पर थोड़ा सा हमें वॉच करना पड़ेगा कि 2-4 महीने में क्या उसका असर पड़ रहा है, कुछ भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे कुछ मर्चेंट्स, बट आई थिंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और सो थिंग्स विल स्टेबलाइज और फिर लोग इसको यूज टू हो जाएंगे।
0: जी शरद जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे राय जानना चाहेंगे कि यूपीआई अब सिर्फ भारत का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया है, हम जानते हैं कि तकरीबन 10 या इससे ज्यादा देशों में यूपीआई चल रहा है, ऐसे में इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स और एनआरआईज के लिए जो सुविधाएं हैं क्या उसमें डोमेस्टिक एमडीआर फ्रेमवर्क का यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी असर पड़ेगा और वो किस तरीके का होगा?
2: मुझे नहीं लगता उस पर फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है जो लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं उनको पहले से आदत है, आपको जो करेंसी कन्वर्जन होता है उसका चार्ज आपको देना पड़ता है, करेंसी कन्वर्जन के अलावा आपको जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, और इसमें अगर आपको ये इस प्रकार से देना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी आने वाली है, बल्कि इंटरनेशनली जहां ये यूज हो रहा है वहां पर किसी ना किसी प्रकार से वहां की जो सरकार है जो बैंकिंग प्रणाली है उन सबको वो करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और मान लीजिए आप किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया और डेटा सिक्योरिटी पूरी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी पूरी नहीं है, फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में पूरी नहीं है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 रुपए ट्रांजेक्शन करते वक्त उसका 10,000 रुपए उसके बैंक से निकल गए, कहीं कोई लीकेज हो गई, आपका जो पासवर्ड है वो लीक हो गया क्योंकि पूरे फायरवॉल्स नहीं थे वहां पर, तो मैं समझता हूँ वो नुकसान बहुत बड़ा है। लोग इसको इस प्रकार से देखें कि अगर थोड़े से पैसे दे के आपको एक सिक्योर्ड कन्वीनियंट फास्ट और बहुत ही इजी आपको एक सिस्टम मिल रहा है थोड़ी सी फी पे करके, मुझे लगता है जो दिक्कत आई वो दिक्कत आई क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड था, 2016 अगस्त में मुझे याद है लाया गया था, पहले आदि हो गए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें आदत डाल दी, तो आदत जब पड़ जाती है तो आदत को छुड़ाना थोड़ा सा कठिन काम होता है और 10 साल पुरानी आदत हो तो और कठिन होता है, तो आई थिंक इसीलिए इस पे इतना कंफ्यूजन और इस पे इतना भ्रम वगैरह जो लोगों के दिमाग में फैलाया जा रहा है या कुछ लोग परेशान है इसको लेके, बट आप इसको अगर ब्रॉड माइंडेडली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया जो दुनिया में अपने किस्म का यूनिक प्लेटफॉर्म था जिसको बाकी देशों ने भी कॉपी कर रहे हैं आज देख रहे हैं, तो ये सदा के लिए कैसे ये निःशुल्क रह सकता है क्योंकि इसमें सारी जो प्रणाली पीछे काम कर रही है एनपीसीआई, हालांकि मैं एनपीसीआई का एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं तो पीछे 32% प्रॉफिट घटा भी था, एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं ओवरऑल ना देखूं, और एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीसीआई को मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही, तो एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है जो लोग वहां काम करते हैं और लगातार इसमें आईटी का इसमें रोल है। अच्छा बीच में जो एप्स काम कर रहे हैं आप देखिए, ये भी एक बात आ रही थी कि क्या ये इसमें अमेरिकन एप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ज्यादातर उनके पास करीब 45% के आसपास शेयर है पूरे यूपीआई का, तो ये देखते हुए कि उनके पास शेयर है तो भारतीय कंपनी अब इसमें आना चाहती है, तो अगर उनको कुछ इसमें मुनाफा ही नहीं दिखेगा उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्लेयर्स फिनटेक के इसके अंदर आए, तो वो लोग क्यों आना चाहेंगे? वो तो नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो वो कहते हैं

0: यहाँ तो सब निःशुल्क है, तो हमारे हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है। और यहीं पर जैसे हम जो आज बातचीत कर रहे हैं, इसका लक्ष्य भी मैं ये मानता हूँ यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना कि ये सदा के लिए फ्री रहने वाली चीज नहीं है। और एक और सर्वे मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊं, एक लोकल सर्कल्स ग्रुप है, उसका 2025 का सर्वे आया,
1: जी
0: और ये उस सर्वे में निकल के आया कि 57% वेंडर्स को यूपीआई आने के बाद अपने बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो आई थिंक लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इससे बढ़ी है, और वो फायदा सारा वेंडर्स को जा रहा है, किसको जा रहा है, वो मर्चेंट्स को फायदा जा रहा है अगर आपका बिजनेस
1: जी
0: बढ़ा है।
1: बिल्कुल
0: तो इसको वेंडर्स इस तरीके से सोचे कि उनके बिजनेस बढ़ा है और साथ में थोड़ी सी उस पर आपको फी देनी पड़ रही है।
2: जी, ना केवल बिजनेस बढ़ा है उसमें, देखिए एज ए बैंकर मैं बताऊंगा, बैंक में जो कोई लोन प्रपोजल प्रस्ताव आता है तो हम कागज मांगते हैं
1: जी
2: और ये स्वाभाविक है, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे, लेकिन ये जो आपकी वेंडर की जो इसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इट इज फुल प्रूफ, इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे लोगों को लोन भी आजकल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वेंडर्स के लिए ना केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा है बल्कि व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए जो औपचारिकता तमाम पूरा करना पड़ता था पहले, ये केवल उनका वो मशीन से दिखा देते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये है, कुछ इज फुल प्रूफ
1: जी,
2: तो ये भी है। 6.5 करोड़ मार्चेंट्स आपके जुड़ गए हैं इसमें, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में कि ना केवल उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि बढ़ने का अपार उनको स्कोप मिल रहा है
1: जी। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा का सार यही है कि बदलाव जब भी आता है अपने साथ कुछ सवाल और शंकाएं जरूर लाता है, लेकिन जब बात डिजिटल भारत की हो तो आंकड़ों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। आज हमने जाना कि MDR कोई आम नागरिक की जेब पर बोझ नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है। UPI का सफर सिर्फ एक ऐप से पेमेंट करने तक सीमित नहीं था, ये भारत के एक आम नागरिक को देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रांति थी और ये क्रांति न रुकी है न रुकेगी और ये आगे भी जारी रहेगी। शरद कोहली जी आपका, विकास नारायण मिश्र जी आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे UPI भुगतान में MDR की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक

0: कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कुल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बजट तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचों को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल होने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्कमुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी सहित 18 सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने में उद्योग जगत से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भारत की क्षमता पर भरोसा जताया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा, भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक उपलब्धि। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया और भारत ने सऊदी अरब में मक्का के पास ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक 93-29 मतों से पारित किया गया। व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले ने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यातकों को दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत तक अधिक पहुंच प्रदान करेगा। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब के निवेश पर भी सहमति जताई है। इस समझौते का उद्देश्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना का लक्ष्य प्राप्त करना भी है। थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ की रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दविजेव के साथ सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा निर्धारित है। मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। सेना प्रमुख मॉस्को में टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। भारत से लगभग 4,000 मीट्रिक टन या 47,00,000 लीटर डीजल दीनाजपुर के पार्वतीपुर रिसीविंग टर्मिनल डिपो में पहुंच चुका है। यह भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया गया है। वर्ष 2018 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश ने 15 वर्ष में लगभग 2 मिलियन टन डीजल आयात करने पर सहमति जताई थी। मार्च 2023 में पाइपलाइन का उद्घाटन होने के बाद से बांग्लादेश ने इनके माध्यम से 3,30,087 टन डीजल आयात किया है। ईंधन को 3 सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों पद्मा ऑयल, मेघना पेट्रोलियम और जमुना ऑयल के बीच लगभग समान रूप से वितरित किया जाता है। नेपाल के उत्तरी पश्चिमी मुगु जिले में आज तड़के 3 घंटे के भीतर 2 भूकंप आए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार पहले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 और दूसरे की 4.2 थी। दोनों भूकंपों का केंद्र मुगु जिले के कलई के आसपास रहा। फिलहाल किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। यह गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा नागरिकों को जबरन गायब किए जाने की घटनाओं पर मानवाधिकार संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। बलूच नेशनल मूवमेंट BNM के मानवाधिकार

0: सुधार विभाग पाक ने बताया कि बलूचिस्तान प्रांत में एक और नागरिक को जबरन गायब कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नई घटना पूरे प्रांत में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा गैर न्यायिक हत्याओं और जबरन गायब करने की बढ़ती घटनाओं के बीच हुई है। तुर्बत के मुल्लाही बाजार निवासी फदह अनवर को 19 अगस्त की रात जबरन गायब कर दिया गया था। पिछले महीने बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार संगठन पांक ने बताया था कि सद्दाम बुगती को 29 अगस्त को डेरा बुगती जिले के नवाब बाजार इलाके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवाद निरोधक विभाग CTD ने अगवा किया था। एक अन्य घटना में 26 अगस्त को उसी इलाके से CTD और पाकिस्तान पुलिस द्वारा दो मजदूरों को अगवा किया गया था। 30 अगस्त को बलूच महिला मंच ने बलूचिस्तान के केच जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा नाबालिग लड़कियों सहित नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गैर न्यायिक हत्याओं और अज्ञात शवों की रिपोर्टों पर चिंता जताई है और बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने, यातना और गैर कानूनी हत्याओं के व्यापक पैटर्न के बारे में भी चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: सऊदी अरब ने कहा है कि वायु रक्षा प्रणाली ने कल शाम मक्का के पास एक हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। यमन सरकार के समर्थन वाले गठबंधन सेनाओं के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने इस हमले को मक्का को निशाना बनाने की हौसियों की दूसरी कोशिश बताया। उन्होंने वर्ष 2017 में हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले का भी उल्लेख किया। मेजर जनरल अल मलिकी ने कहा कि ऐसे किसी भी हमले के खिलाफ गठबंधन आवश्यक कदम उठाएगा। हालांकि हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि भारत सऊदी अरब की भूमि पर हमलों, नागरिकों के जीवन और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व वाले शहर मक्का के नजदीक यह घटना चिंताजनक है। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल करने का आग्रह किया। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूलन तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने में उद्योग जगत से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भारत की क्षमता पर भरोसा जताया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक उपलब्धि। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया और भारत ने सऊदी अरब में मक्का के पास ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल करने का आग्रह किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Playing in the background, the last track on the playlist for tonight. This one is called Lightheaded and it's by Keena featuring Cozy Boy. And with that, it's a wrap on this evening's edition of M Time. Thank you so much for having kept me company. I hope you enjoyed the playlist that we put together. And on that note, I'm going to let you know that I'm going to be back on air hopefully next Wednesday. But we are here every evening between 10:30 and 11 on this station, which of course is FM Gold 100.1. You can also catch us between 6 and 7 p.m. and between 8:05 and 9 on FM Rainbow 101.4. Until next Wednesday, this is me, Shefali, saying take it easy, take care of yourself, and stand by for the news in Hindi.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे

0: देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. Prime Minister called for greater industry participation in scaling innovation and emerging technologies such as artificial intelligence, AI and quantum computing. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. The roundtable was held ahead of the inauguration of the 5th edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi tomorrow. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the cabinet meeting in New Delhi today. He said the decision is expected to benefit over 51 lakh additional employees. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
0: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 lakh employees ko iska benefit milega, jo ki 15 to 25 wale band mein the, they will start getting covered in the new PF rules. Bharat Sarkar ka ispe estimated government

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, गुड इवनिंग अर्जुन.
0: गुड इवनिंग सर.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: Benchmark domestic stock market indices rise, Sensex gains over 300 points, Nifty settles at 23,218. New Zealand passes legislation to implement free trade agreement with India and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त, सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक बढ़ा, निफ्टी 23,218 पर स्थिर हुआ. न्यूजीलैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने के लिए कानून पारित किया और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें घटी.
0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and

0: those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आयुष श्रोताओं, बिना विलंब किए जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 333 अंक बढ़कर 74,336 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 99 अंक की बढ़त के साथ 23,218 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.2% की गिरावट आई। इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार करते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. Sensex gained 333 points to close at 74,336. Nifty added 99 points to settle at 23,218. In the broader market on the NSE, the Nifty Mid-Cap 100 Index ended on a flat note, while the Nifty Small-Cap 100 Index dropped 0.2%. Earlier, the markets opened on a positive note despite elevated US bond yields and crude oil prices and traded within a range throughout the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 2.5%, एसबीआई 2% से अधिक और एक्सिस बैंक के शेयरों में लगभग 2% की बढ़त हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में टीसीएस 2.5% से अधिक, इंफोसिस लगभग 1.5% और टेक महिंद्रा के शेयरों में 1.3% की गिरावट आई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 18 out of the 28 sectors edged upward among the top gainers. Insurance advanced 2%, FMCG rose over 1.4%, and PSU banks added 1.1%. In contrast, Focus IT shed 1.5%, IT lost 1.4%, and telecommunications dropped almost 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,351 companies declined, 1,979 companies advanced, and 231 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज अपरिवर्तित रूप से 95.96 रुपए पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें जो हैं उसमें गिरावट आई है, और एक तरफ हम देख रहे हैं वहीं पर अपने स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि शुरुआती बढ़त जो है उसे उसी तरीके से रेंज बाउंड में रखा है, तो ये क्या दर्शाता है, क्या इंगित करता है?
2: नहीं प्राची, जो आपने बात कही कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, मैं उसको कहूंगा कि मामूली गिरावट आई है। अभी भी हमारे लिए वो जो है अनकंफर्टेबल रेंज के बाहर है, मतलब जो कंफर्टेबल रेंज है उसके बाहर है, मतलब 100 बिलियन डॉलर। अभी भी क्रूड प्राइसेस मुझे लगता है 107 बिलियन डॉलर के आसपास है, और जो इंडियन बास्केट है वो तो तकरीबन,
1: लेकिन जो ही गिरावट आई है मे बी उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट वहां झलक रहा हो।
2: हाँ बिल्कुल, हाँ हो सकता है कि आज एक इमीडिएट जो आज आपने देखा बाजार जो पॉजिटिव जोन में थी वो एक कारण हो सकता है, लेकिन जो आपने बात बोली कि रेंज बाउंड है, कहीं ना कहीं एक ब्रॉड रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, और जो दुनिया में अनिश्चितता है चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो, चाहे मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है, और दिनों दिन वो स्थिति कोई सुधार नहीं दिख रहा है, अनिश्चितता जो है एकदम निश्चित हो गई है जिसको कहा जाए, तो मुझे लगता है वो बड़े कारण है ये। और ये सब तब है जब कि जो भारत के अपने आर्थिक जो इकोनॉमिक आप पैरामीटर्स कह लें या जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो एकदम बढ़िया हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। हमारा जीडीपी जो Q1 का आया बहुत ही उत्साहवर्धक था, नंबर 7.8 जो कि एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आया, और उसके अलावा अगर अभी भी आप इन्फ्लेशन देखेंगे ठीक है थोड़ा ऊपर आ रहा है, चूंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से दबाव है लगातार बढ़ रहा है, आप तकरीबन 5% के आसपास है, लेकिन जो रेंज है आरबीआई की अभी भी उसके अंदर है जो, तो मुझे लगता है। और जो भी आप डेटा देखेंगे, टैक्स का डेटा देखें चाहे जीएसटी कलेक्शंस का डेटा देखें, कार सेल्स या जो भी ऑटो सेक्टर में जो सेल्स हैं, तो सारा आपको पॉजिटिव साइड है, लेकिन चूंकि जो दुनिया में अनिश्चितता है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं वो हमारे बाजार पे हावी है।
0: So today, do you expect that there was short covering in the market because we saw bounce back in the Nifty Bank, which went up by almost 1%. PSU Bank Index also went up

0: do you see value buying in the markets right now, even though if it's for one day?
1: I think, Arjun, what you're saying is I would agree more with the word value buying. I think people are also shifting more from small cap, medium, mid caps to the defensive, to the large caps, probably looking at more secure, trying in these times of uncertainty, you tend to, you know, exit the stocks or the benchmarks where you see there could be more volatility. Obviously, the first in line to take hit is obviously the small caps and the mid caps. So probably I think the intent of the investor is to shift to the safer havens, and obviously then large caps are the best bet in these times of uncertainty.
0: Also, central banks are holding their meetings. Our RBI is going to conduct its monetary policy committee meeting from October 5 to 7. Repo rate is 5.25%. Do you see rates being hiked and valuations change? Because banking incomes will also be impacted accordingly.
1: See, Arjun, more than that, I think before RBI takes a decision on the repo rate, I think more than that, what is being watched is the decision what tonight we get on the decision taken by the Fed Reserve on its own interest rate, because the expectation is there's a huge expectation that they would hike interest rates in US. And what happens is, and already if you look at the US bond yields, they're over 5% after 2023. It's for the first time that they have inched over 5%, the 10-year bond yield. And obviously that also puts pressure on Indian bond markets, also on the also indirectly on the Indian equity market, because then the FIIs, the foreign investors, tend to go and invest in the US market because the interest rates obviously are going to go up. And it is always said that US treasury bonds are the most secure instruments in the world.
2: सिद्धार्थ, क्षेत्रीय स्तर पे जैसा कि अर्जुन ने पहले अपना सवाल पूछा, मैं उसी स्तर पर आपसे बात करना चाहूंगी कि क्षेत्रीय स्तर पे अगर हम देखते हैं तो एक आम निवेशक, एक आम जो श्रोता जो हमारे प्रोग्राम को सुनता है, उनके लिए आप बताइए कि अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है, या यूं कहिए कि समझदारी भरा हो सकता है?
1: नहीं, देखिए, एक तो मैं पहली बात ये कहूंगा कि अगर आप इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय बाजारों में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं
2: जी,
1: तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, धैर्य के साथ आएं, क्योंकि दुनिया में बहुत अनिश्चितता है और ये अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है. और ये जो अभी तक एक फंडामेंटल्स, बहुत सारे जो फंडामेंटल चीजें हम मानते थे कि जब भी अनिश्चितता आती थी या तेल की कीमतें बढ़ती थी या वॉर आता था, तो ये हमेशा माना जाता था कि गोल्ड प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं. इस बार भी बढ़ी हैं, लेकिन उस अनुपात पे नहीं बढ़ा गोल्ड. इनफैक्ट बीच में जब अनसर्टेनिटी बढ़ी तो हमने देखा गोल्ड प्राइसेस नीचे भी आई. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारे साथ एक मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो है क्रूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल, जो कि हम 90% इंपोर्ट करते हैं. और क्रूड काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए, क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल, द मेस मटेरियल विच एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा, और अभी वो लग रहा है कि रहेगा लंबे समय तक. सप्लाईज नहीं मुझे लगता इम्पैक्ट होगी, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे भी इम्पैक्ट होगा. तो थोड़ा बहुत अगर आप भारतीय बाजारों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा लंबी अवधि, मतलब मेरा मानना है कि कम से कम 3 साल का मन बना के आए कि, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले साल बहुत मुनाफा हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में ये रख के आए कि थोड़ा आपको समय वेट भी करना पड़ सकता
2: है. क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि जब बाजार ढलान पर हो, तब खरीदारी, असल खरीदारी उसी वक्त होनी चाहिए.
1: हाँ, लेकिन प्राची, होता क्या है कि जब भी आप देखेंगे कहीं अनिश्चितता आती है या कहीं डर होता है, भय होता है, तो हर आदमी बहुत अपने डिसीजंस को बहुत ना कैलकुलेटेड, या आदमी सोचता है थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ी स्थिति जो काले बादल हैं वो छट जाएं तब लगाएंगे. लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, अगर मुझे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर ऐसे वक्त को चुनूंगा निवेश करने के लिए. लेकिन हाँ, मैं ये भी साथ में कहूंगा कि बहुत बढ़िया से अपनी जो है फैक्ट फाइंडिंग बढ़िया से करें, अच्छी कंपनियां चुने. और आपने जिन क्षेत्रों की बात की, तो मैं वहां पे आजकल जो नया, एक तो जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नए क्षेत्र हैं, स्पेस है, डिफेंस है,
2: ईवी है
1: बहुत बढ़िया आपने बोला, उसके साथ

0: फार्मा हमेशा एक डिफेंसिव क्षेत्र है, तो मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे अच्छा एफएमसीजी को भी मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि इंडिया की जो कंज्यूमर स्टोरी है, जो कंजम्पशन स्टोरी है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है.
1: सो स्पीकिंग अबाउट इन्फ्लेशन इंपैक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स अर्लियर एंड देन लिंकिंग इट टू एफएमसीजी, बिकॉज देयर मार्जिन्स हैव ऑलवेज बीन अफेक्टेड बाय बिजनेस inflation at the wholesale price index level, but that went up by 1.4% today. You said that it's a good sector to get into, especially long term. What are the other factors that one can look into when it comes to FMCG, fast moving consumer goods?
0: See, Arjun, I would say as far as fast moving consumer goods, I think it is always, it's an area which I think always is, you will always have, stays in green. I don't see very lot of challenges for...
1: Like pharmaceuticals.
0: Yeah, because FMCG, what do we mean by FMCG? What the products which you, goods and products which we consume on a daily basis. So I think the demand in India is, the consumption demand is intact, and even there was a fear in some about a month back or 15 days back that our monsoons have not fared that well. But I think as time passed on, even monsoons have been good. Agriculture sector is doing good. So I see the rural demand also intact, and inflation for us has still not passed on or has not grown so rapidly. So I think, and as far as RBI guidance, if we have to go by their guidance, so they do not see it going beyond 6% for the entire year. So I think if inflation also remains under control, so I don't see FMCG companies passing on prices, or we see prices going up sharply.
1: What about information technology? That saw a drop in valuation today. It saw a drop in valuation yesterday also, despite their earnings being good.
0: I think, Arjun, in the near term, IT valuations have been taking a hit, and not to obviously say about today or yesterday, but I personally believe that Indian IT industry is very robust, very strong, and already we are seeing there are a lot of questions being raised on the way we are seeing artificial intelligence, or the uncertainty being created by artificial intelligence. So I think it's a good value buying if you ask me. But yes, one should wait and watch, and I think probably invest in small tranches.
2: अन्य खबरों पर भी सिद्धार्थ आपसे बात करेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं कि दरअसल अन्य खबरें हैं क्या. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ पाएंगे.
3: पुराना जो कैप था वो सितंबर 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था. तब से अब तक एवरेज जो सैलरी है वो काफी बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है. आज एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की एवरेज इनकम करीब करीब 23,000 रुपए पर मंथ है, जो कि पहले से करीब ढाई गुना ज्यादा बढ़ी है. भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीज एवरी ईयर.
2: सिद्धार्थ, विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक सुरक्षा की बात आती है, उससे ये किस तरीके से कनेक्टेड है और कैसे लाभान्वित करेगा?
0: नहीं, मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन, जैसे मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्री जी ने भी बोला अपने अनाउंसमेंट में, क्योंकि अब अगर उसको 15,000 से 25,000 कर रहे हैं तो, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 25,000 तक जिसकी सैलरी है उसको अनिवार्य रूप से, जो सबसे बड़ी चीज यहाँ आती है कि कंपल्सरीली आपको ईपीएफओ के दायरे में लाया जाएगा, या कंपनी आपको ईपीएफओ का जो बेनिफिट है, जो सोशल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है, उसमें आना ही पड़ेगा. तो मुझे लगता है उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर द ईयर्स जैसा उन्होंने बोला 2014 में पिछले लास्ट रिवीजन हुआ था 15,000 तक, तो उसके बाद से बिल्कुल ठीक बात है कि अब सैलरीज बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो किसी भी एवरेज सैलरी 23,000 जो उन्होंने जिक्र भी किया, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है.
2: क्या ये बदलाव असंगठित क्षेत्र से जो संगठित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता, एक नई किरण के तौर पर हम देख पाएंगे इसे?
0: नहीं प्राची, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार के जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए तो एक पेंशन होती है उनकी, अब चूंकि थोड़ा उसका एक रूप प्रारूप बदल गया है, जो सरकारी एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है, तो न्यू पेंशन पॉलिसी आ गई है. लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी जो

0: there is trade protectionism, supply chain disruption. So I think this opens up huge potential market for our Indian exporters.
1: And that's been a BRICS declaration also.
0: Yeah, right.
1: In more news, government has introduced an exemption from the requirement of registration cum membership certificate, RCMC, or certificate of registration for small value export consignments up to 3 lakh rupees. The Ministry of Commerce and Industry said that the measures aimed at reducing the compliance burden for new and small exporters and facilitating exports through postal, courier and other emerging channels. The ministry said that the measure provides MSMEs, artisans, small businesses and first-time exporters with a simpler entry point into international markets by removing the requirement to obtain an RCMC. It added that the move will help emerging exporters to test overseas markets and establish an export track record with lower initial compliance requirements. Ease of doing business once again?
0: Absolutely. I think the number of steps that we have taken, I think this is one more step in that direction.
2: अन्य खबरों में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने सोने और चांदी की वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग शुल्क में बदलाव किया है। सोने के लिए हॉलमार्किंग शुल्क 45 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति वस्तु कर दी गई है, जबकि चांदी के शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदले हुए शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे।
1: Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that the payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The Ministry said that consequently, approximately 96% of all person-to-merchant transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. The ministry said that MDR is neither a tax nor a charge collected by the government or National Payments Corporation of India. It is distributed among payment ecosystem participants, including banks and payment application providers to support the operation and continued expansion of the UPI ecosystem.
2: आगे बढ़ते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 1.5% बढ़ा, जबकि जापान के निकेई सूचकांक में 0.7% की वृद्धि हुई। सिद्धार्थ, ये क्या इंगित करता है इस समय जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए?
0: नहीं, देखिए, जहां तक जापान की बात है, जापान में मुझे लगता है पहली बार अभी तक डिफ्लेशन था, तो पहली बार अब इन्फ्लेशन की वजह से मुझे लगता है जापानीज मार्केट्स में हमको इतना पॉजिटिव वो दिख रहा है। लेकिन हालांकि वहां पे अभी भी जो उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का अभी भी जो एक्सपेंडिचर है, वो काफी हाई है। तो अभी मुझे लगता है अर्ली डेज, बट यस, देयर इज गुड न्यूज फॉर देम इन टर्म्स ऑफ AI, ऑटोमेशन, इन इस तरह, और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स वहां पे किए हैं, तो कंपनियों के रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें वहां की मार्केट्स में एक जो है अपटिक दिख रहा है। साथ साथ जो कॉस्पी की आपने बात कही है, वो मतलब आप सबको पता है, क्योंकि दो ही बड़े कारण है उसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दो बड़ी कंपनियां हैं जो चिप्स बनाती हैं, तो वो उनकी वजह से वो जो है उस एक्सचेंज में बढ़त दिखती है।
2: जी,
1: moving on to the crude oil market, global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.2% down at $107.44 per barrel in intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading 1.8% lower at $103.93 per barrel.
2: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 1% की बढ़त के साथ 1,52,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 1.1% की बढ़त के साथ 2,31,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। संक्षिप्त में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी सोने और चांदी के भाव पर।
0: मुझे लगता है प्राची, अभी गोल्ड और सिल्वर, मुझे लगता है दोनों में ही हम रेंज बाउंड एक्टिविटी देख रहे हैं, और मुझे आने वाले समय में ऐसा कोई स्पर्ट नहीं दिखाई दे रहा, अनटिल अनलेस मतलब ग्लोबली कोई ऐसी बड़ी क्राइसिस जो अभी है उसमें और स्थिति खराब हो जाए तो शायद गोल्ड। हालांकि ये मैं जरूर मानता हूं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा मॉडरेट नहीं करेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स भी बहुत बड़े पैमाने पे अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद आप दोनों का।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex gains over 300 points. Nifty settles at 23,218. New Zealand passes legislation to implement FTA with India, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेष

विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावित हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले

डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मरगाथम कुमार वेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जाँच आज होगी जबकि 19 तारीख तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सम्मेलन मौजूदा और उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों, परिचालन तत्परता और संसाधन तैनाती, क्षमता वर्धन और बल के आधुनिकीकरण की योजना तथा राष्ट्रीय समुद्री रणनीति के अनुरूप संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी के माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक सक्षम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमार वेल और सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जाँच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत से सहायता लेने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। कोयला मंत्रालय आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां दौर आयोजित करेगा। 16वें दौर में पूरी तरह और आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खंडों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि कोयला खदानों की नीलामी का यह ढांचा उदार शर्तों के साथ संचालित होता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा में देश सेवा के मंत्र और आज भी जारी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आज 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: பண்பலைகள் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ

0: सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मार्गाथम कुमार वेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जाँच आज होगी जबकि 19 तारीख तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत से सहायता लेने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today at Yashobhoomi in New Delhi. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition is being organized on the theme Silicon to Synth Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Ahead of the inauguration, the Prime Minister chaired a semiconductor roundtable with the

0: ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान

0: को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेदीय हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मरगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मंदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जाँच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल के वित्त सचिव घनश्याम उपाध्याय ने बताया कि श्री वागले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate SEMICON India 2026 today at Yashobhoomi in New Delhi. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Ahead of the inauguration, the Prime Minister chaired a semiconductor roundtable with leading global CEOs in New Delhi yesterday. Mr. Modi stressed the need for close cooperation between the government and industry to strengthen India's semiconductor sector. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated that the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and will always remain integral and inalienable parts of India. India called upon Pakistan to immediately vacate from areas under its illegal and forcible occupation instead of engaging in such theatrics. BJP